0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜலா சுஃபலா மலய ஜீதலா சஸ்யஷா.

सुहासिनी सुमधुर भाष

नमस्कार, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती की चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की बैसाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026 प्रातः की 5:58 और 5 सेकंड हुए हैं। हम अपना प्रसारण आरंभ कर रहे हैं।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं जी पूछने को है आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और

उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से

0: ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती की चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 6:05 हुए हैं। अब हमारा प्रसारण हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। सबसे पहले सुनिए कार्यक्रम वंदनवार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं मानते। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

वो भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। सुनिए आज का भाग 189 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम ही रहे प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मुलुंद सबनीस। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर सुने चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रंगतरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे सुनिए पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी है जीवन एक सरल रेखा। लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। संपादन सहायक काजल भद्रगे। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तरानी में।

संध्या ने 6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता, 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, लेखन है वीरेंद्र कश्यप का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर, इनकी प्रस्तुति। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए और 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाला

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ का भाग 189।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है।

0: जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा, इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कोश फूले, कुमुदिनी जिये सकुच रहे, भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी छटा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए।
2: आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं, हम उनको रण छोड़ कहते हैं, हम उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हम उनकी रासलीला में शामिल हो सकते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाजत देते हो कि हम उनके साथ कर सकें। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा।

0: धोखा हो गया। उन्होंने कहा क्या धोखा हो गया, तो हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे, और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया, उसके बाद अब आप राजा बन गए, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूं, तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे
1: जी।
0: तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं, मित्र बन के हमारे साथ खेलते हैं। लीजिए ऐसा ये भजन आपको सुनाता हूं।
2: वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला

0: सचमुच हम बांसुरी बजैया के रंग में जैसे डूब गए थे, खो से गए थे। अनूप जी हमें बताइए कि इस भजन में किस राग की चर्चा थी?
1: कोई प्योर राग इसमें हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, मिक्स है
0: जी। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों

0: संरचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें।
1: भैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन हमने, मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने गाई थी। इस भजन के साथ साथ जो व्याख्या होती है वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है
0: जी।
1: कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी। सोचा था कि कन्हैया आएंगे, ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई है, समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती, तो घंटी को आदेश दिया बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे जरा सा माखन मुख से गया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी।
0: क्या बात है,
1: कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थे और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं।
0: क्या बात,
1: बस आगे गोपी पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास और यशोदा पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास

समय का वर्णन हुआ भोर और सांझ, तो भोर सुनिए भोर की राग राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का महसूस हो।

那个 lady 要跳出来，ये शोधा कहती है कन्हैया तुमने हमेशा माखन ही चुराया है, तुम्हारा नाम पड़ गया माखन चोर। अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, वो सब तो तुमने चुराते, तो ये माखन से इतना

0: वाह, बहुत सुंदर, भाव विह्वल कर देने वाला भजन आपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और हम सबकी आंखें नम है इस समय।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रही हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत की है आशीष झा। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: से गिफ्ट है। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूली बिसरी गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शास्त्रीय संगीत से महकता ये गाना। फिल्म है हमदर्द, प्रेम धवन के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।

आप सुनते हैं सखी की वजन। चित्रलेखा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

टैक्स लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

रत्ता गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आप उनसे हसरत जयपुरी के बोल संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

सहस्रगीत गीत कार्यक्रम का अगला गाना तलाक फिल्म से आशा भोसले की आवाज में प्रदीप के बोल श्री रामचंद्र का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए मां,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे सजा फिल्म से संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना स्वर्ण सुंदरी फिल्म से, भरत व्यास के बोल और संगीत आदि नारायण राव का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक

चाचा के चुनते हैं वही जो है सबसे सही। वीको टर्मल क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामने और उज्जवल बनाए। वीको टर्मल क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमें रहे प्यार के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। दो प्रेमियों ने छेड़ी है एक मीठी सी बगावत। अजनबी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गाना। आनंद बख्शी के बोल और संगीत राहुल।

0: फिर मैं कभी कहना दिल तोड़ने वाली
1: बात
0: और फिर मैं कभी कहना दिल तोड़ने

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

छोटी सी शरारते भी हैं और थोड़ी बहुत छेड़खानियां। अमीर गरीब फिल्म से आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गाना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा।
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: तरह ही प्यार की। आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म से ये गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के भूल।
1: गए

करता है अपन और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन परेशान।

जुगनू फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाने अनुबक्षी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का आखिरी गाना हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन।

0: इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार की कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: हम ही रही प्यार के कार्यक्रम आपने हमारे मुंबई केंद्र से सुना। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी

0: चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल

0: आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरला

0: में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान

0: पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओ, 8:15 हुए हैं। हमारे मुंबई केंद्र से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, आज इसका 28वां भाग।
3: जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जन जागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंददास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में, देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं,

0: बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण करो।
1: तुम राजे गृह लक्ष्मी धर्म साक्षी।

0: समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
1: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का

0: विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिम, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
0: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी।

0: बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
1: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
2: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
1: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
2: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल को किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का फंडिंग दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान नौकरी, इस परिंदे में जान नौकरी और जीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने की

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: ये हम लोग उनके लिए है, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स

0: कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: सेंसस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: चित्रलोक कार्यक्रम आज की सोनी सी सुबह के गले लगते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के इस गाने के साथ डोमिनिक सेरेओ, लॉय मेंडोसा, क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर की बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: बोरा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: जो रहते हैं हमें पकड़ने के लिए तैयार, हमारा परिवार, हमारी फैमिली और इनके कंट्रीब्यूशन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फैमिली डे पे। तो आइए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, खुशी हो या गम, साथ रहे हर पल, तारारम पम। इस फिल्म से शान महालक्ष्मी।

0: जल्दी सुनवाएंगे आपको आजा नचले फिल्म से ये गाना, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: रहता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था।

0: स्टीम का जवाब नहीं है, जिसने मुझे इतने चैन से इन चीजों को थमार दे और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितने उड़ान भरती है, पर इंडिया में जान भरती और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने की

0: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: अगले गाने का इंतजार हुआ अब कम। आइए सुनते हैं आजा नचले फिल्म से ये गाना। चित्रलोक कार्यक्रम में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में पीयूष मिश्रा के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: माफ कीजिएगा, रेखा भारद्वाज की आवाज में बोले गुलजार की और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: माधुरी दीक्षित के बारे में आप और जान सकते हैं आज के फनकार कार्यक्रम में, जो कि पेश होगा आपके लिए 9:30 पर और इसका पुनः प्रसारण होगा आज रात 9:30 पर। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं, पर सबसे पहले ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: दादी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे बाय
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
6: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना भूल भुलैया 3 फिल्म से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल संगीत है न्यू जॉर्ज का डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का

आज का वादा तो सब करते हैं, लेकिन जो खुशियां आज के बाद तक बरकरार रखे वही वादे सच्चे हैं। सत्य प्रेम की कथा फिल्म से सुनिए ये गाना मनन भारद्वाज और तुलसी कुमार की आवाज में, मनन भारद्वाज के बोल और इन्हीं का संगीत।

आज का वादा तो सब करते हैं, लेकिन जो खुशियां आज के बाद तक बरकरार रखे वही वादे सच्चे हैं। सत्य प्रेम की कथा फिल्म से सुनिए ये गाना मनन भरद्वाज और तुलसी कुमार की आवाजों में। मनन भरद्वाज के बोल और इन्हीं का संगीत।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवीश कुमार परमार।
1: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप

0: हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनको प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।
1: इश्क की धूम

कार्यक्रम का अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए 30 मार्क हां फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने। अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार।
1: आप सुन रही थी नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोतो, ये कार्यक्रम हमने आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिली किया। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। इस समय 9:30 हुए हैं। बस थोड़ी ही देर में अब आप सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार।
2: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा।
3: वो मुझे कुछ काम है।
2: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
3: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
2: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
3: क्या नहीं जानता?
2: ये

0: कि एचआईवी छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और एचआईवी के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर एचआईवी से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी एचआईवी जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रोग्राम आज का अखबार।
4: आज का अखबार।

प्रोग्राम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमारे सभी प्यारे श्रोता? आप सब बहुत अच्छे होंगे और भई इस समय ये प्रोग्राम भी सुन रहे होंगे। और इस समय ही क्यों, हम जानते हैं हमारे श्रोता आकाशवाणी को सुने बिना नहीं रह सकते। और भई सुबह की किरण से लेकर हम कह सकते हैं कि चांद के ढलने तक या फिर कभी कभी तो 24 घंटे आकाशवाणी के संग रहते हैं। और ये बात अच्छे से जानते हैं कि आकाशवाणी उनके हर पल की साथी है। अब देखिए ना, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि आकाशवाणी एक सिर्फ रेडियो स्टेशन नहीं है। हमारे देश की संस्कृति, संगीत, समाचार और संवेदनाओं की धड़कन है श्रोताओं। आप जानते हैं जब दूरदराज के इलाकों में संचार के साधन बहुत सीमित थे, मतलब बहुत कम थे ना, तब आकाशवाणी लोगों तक जानकारी पहुंचाती थी, उनकी शिक्षा का साधन भी बनी और भई मनोरंजन का साधन तो शुरू से है ही। यानी आकाशवाणी पे हमारे श्रोताओं को पूरा पूरा भरोसा है और बहुत सारे नए कलाकारों को पहचान दी है आकाशवाणी ने। अब सुबह की जो शुरुआत होती है ना आपकी, वो आकाशवाणी के भक्ति संगीत से ही होती है। हमारे किसान देख लीजिए, उनके लिए भी बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ यहाँ से प्रसारित होती हैं। हमारे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और मधुर फिल्म संगीत तो होता ही है। कहने का मतलब ये है कि आकाशवाणी जन जन की वाणी है। अब हम आपसे हर सुबह मिलते हैं इसी आकाशवाणी में ही, इस माइक के जरिए, तो कितनी बातें, कितनी जानकारी हम साझा करते हैं आप सबसे। मनोरंजन के साथ साथ सूचनाएं हों, ज्ञानवर्धक बातें हों, बहुत सारी जानकारियां हों, तो ये हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचे, आकाशवाणी का यही मुख्य उद्देश्य है। हर तरह से आपके जीवन के विकास में आकाशवाणी रही है, हर पल अपने श्रोताओं के साथ। तो हम आजकल आपको ये भी बता ही रहे हैं, बात कर रहे हैं इस विषय पर कि आकाशवाणी पूरा करने वाली है अपने शानदार सफर के 90 साल। जी श्रोताओं, 8 जून को ये गौरवमय क्षण आएगा। तो इसी सिलसिले में देश के जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं, छोटे बड़े सब, दूर दराज इलाकों में हों या शहरों में हों, पहाड़ों में हों, कहीं भी हों, तो इन केंद्रों पर बहुत सारे कार्यक्रम जो है ना वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो भाई आपका ये जो पसंदीदा केंद्र है चंडीगढ़ केंद्र, विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र, ये भला पीछे कहाँ रहने वाला था? तो आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर एक वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है आकाशवाणी चंडीगढ़ के द्वारा। अब देखिए, आकाशवाणी जो है आवाज़ों, संस्कृतियों, सूचनाओं और जन सेवा की वो एक सशक्त धारा है ना, जिसने पिछले 90 वर्षों से देश के हर कोने तक अपनी पहचान बनाई है। हमें बड़ा गर्व है और इन्हीं गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा के बारे में इस उपलक्ष में आकाशवाणी चंडीगढ़ द्वारा ना एक विशेष वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है कल यानी 16 मई को, और समय है सुबह 6 बजे। अच्छा, ये केवल एक पद यात्रा नहीं है, बल्कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की समर्पित यात्रा को एक सम्मान देने का सामूहिक संकल्प।

संकल्प है। आपको ये बता दें, इस आयोजन में आकाशवाणी चंडीगढ़ के सभी कर्मचारी हिस्सा लेंगे, उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी होंगे, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी होते हैं वो भी खुशी खुशी इसमें हिस्सा लेंगे, हमारे जो कैजुअल असाइनीज होते हैं, इसके अलावा उद्घोषक उद्घोषिकाएं और जो ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट हैं हमारे, ये सब इसमें हिस्सा लेंगे। और हम उन्हें जिन हमारे कर्मचारियों को, चाहे वो सेवानिवृत्त हैं या फिर अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको अगर इस बारे में नहीं पता है तो उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं। आप आइए, हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बन सकते हैं और स्वास्थ्य, ऊर्जा और एकता के इस संदेश को आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस भव्य यात्रा को हम सब मिलकर यादगार बना सकते हैं। तो फिर से बता दें, कल यानी 16 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी चंडीगढ़ एक वॉकाथोन का आयोजन कर रही है। तो भाई, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे आकाशवाणी के बारे में, अब ऐसा है ना कि आकाशवाणी तो निरंतर अपने रूप में जैसे बहे जा रही है, चले जा रही है, तो हम भी कल सब मिलकर चलेंगे और इस गौरवमयी क्षण का हिस्सा बनेंगे।

जी, तो हम सब मिलकर कल चलेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष का जो सफर है उसे मनाने के लिए। तो अपने श्रोताओं को हम बता दें, इस समय विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। और आप सब जानते ही हैं, इस प्रोग्राम में अखबारों की सुर्खियां हम आप तक पहुंचाते हैं, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, स्थानीय भी होती हैं, प्रादेशिक भी, खेलों की बात भी होती है भाई, और मौसम का हाल भी हम आपको जरूर बताते हैं। तो करते हैं शुरुआत, लेकिन ये पहले संदेश आप सुन लें।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चलिए अखबारों की ओर रुख करते हैं और सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की जो सुर्खियां हैं वो क्या हैं। तो प्रधानमंत्री ने ईरानी विदेश मंत्री अराग्जी से की मुलाकात, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। सैयद अब्बास अराग्जी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे हैं। उधर भारत मंडपम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर से आए विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ब्रिक्स बैठक में शामिल विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री ने अपील की, ब्रिक्स का मंच अहम है, यूएन चार्टर का उल्लंघन करने वालों की खुलकर करें बाकी देश निंदा। देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा हुई। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण का किया ऐलान, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और दमन दीव शामिल हैं। भारत के 2 एलपीजी वाहक जहाजों ने पार किया होर्मुज जलडमरू मध्य। उधर ओमान के तट पर भारतीय जहाज पर हुआ हमला, चालक दल सुरक्षित, भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई के सदस्यों ने अहमदाबाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कड़ा विरोध किया, उनके इस्तीफे की मांग की। उधर इस मामले में सीबीआई ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और शिक्षा मंत्री ने इस बारे कल बैठक की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से ममता बनर्जी की वकालत और पंजीकरण पर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। ये कार्रवाई ममता बनर्जी के कोलकाता हाईकोर्ट में वकील के रूप में पेश होने के बाद की गई। कम झटके और ज्यादा सुरक्षा के साथ होगा रेल का सफर। भारतीय रेलवे पुराने डिब्बों को हटाकर लगाएगा हाईटेक LHB कोच। सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई, 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। और देश में आज की बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री यूएई पहुंचेंगे। चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। पश्चिम एशिया संकट पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी सीधी चेतावनी, कहा सोच समझकर आगे बढ़ें। होर्मुज में बढ़ा समुद्री संकट, ईरान ने यूएई तट के पास एक जहाज को किया जब्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेनाओं की कैनबरा में 12वीं एयर स्टाफ टॉक हुई। रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास और भविष्य हवाई युद्ध तकनीक पर हुई चर्चा। रूस ने यूक्रेन पर दागे 800 ड्रोन, कई क्षेत्रों में मची तबाही, 6 लोगों की मौत हुई। उधर ईरान ने चीनी जहाजों के लिए खोला हॉर्मुज स्ट्रेट, चीन द्वारा जलमार्ग को खुला रखने के समर्थन के बाद लिया गया है ये फैसला। अमेरिका से 200 बोइंग विमान खरीदेगा चीन, इस खबर के बाद 4% शेयर गिरे। नेपाल ने स्पष्ट किया अपना रुख, भारतीय पर्यटकों के लिए नई पाबंदी लागू नहीं की गई। भारतीय नागरिकों पर वीजा 30 दिन की समय

सीमा या अन्य किसी भी प्रकार की कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है। और लगातार सातवीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बने योवेरी मुसेवेनी।

आप सुन रही हैं प्रोग्राम आज का अखबार। मैं हूं आपके साथ सुनीता भगत। कुछ और सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे आज परिवार की भी, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। पहले एक प्यारा सा गाना सुनते हैं।

भाई पूरे परिवार में जब सारे सदस्यों के चेहरे यूं ही खिले खिले दिखे ना, तो मन मयूर बस यूं ही नाच उठता है और ऐसे ही गा उठता है जैसे ये सब गा रहे हैं। परिवार तो दोस्तों वो छांव है जहां जीवन की हर धूप ना फीकी लगने लगती है। सिर्फ खून के रिश्तों का बंधन नहीं है परिवार, विश्वास हो, त्याग हो, प्यार हो, प्रेम, अपनत्व, इसकी हम कह सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरत डोर है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, आपने भी महसूस किया होगा, तब परिवार ही है जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। अब चाहे भाई बहनों की नोकझोंक हो, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हो, पिता का मार्गदर्शन हो, माँ की ममता हो, ये सब मिलकर हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। किसी ये मालूम नहीं होगा कि परिवार हमें ये सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं। तो एक जो मजबूत परिवार है ना, वो हर इंसान को आत्मविश्वास देता है और हर मुश्किल से लड़ने की

0: ताकत भी देता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम मना रहे हैं। इस तरह के दिन मनाने का मकसद यही होता है श्रोताओं, कि जो चीज़ें कई बार हम भूल चुके होते हैं, जो जज्बात कई बार हम महसूस नहीं करते हैं, उन्हें हम फिर से महसूस करें और इस बात का एहसास करें कि दुनिया में परिवार के साथ रहना कितना ज़रूरी है। अच्छा, तो याद आया, आज सुबह 10:05 पर हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम भी है। जी जी, हम जानते हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन विषय आपको नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। आज का विषय है परिवार, हमारा संबल और आधार, इसे संजोकर रखने का करें प्रयास। फिर से बता दें, परिवार हमारा संबल है, हमारा आधार है, और इसे संजोकर रखना, इसका प्रयास करना है हमें। तो यही है आज का विषय हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में, और आपके टेलीफोन कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार।
1: अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा,
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको, तो
2: बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
3: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
3: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
3: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
4: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: अच्छा जी, तो आज का अखबार प्रोग्राम में अब कुछ सुर्खियां, स्थानीय और प्रादेशिक भी। ट्राई सिटी की बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार चंडीगढ़ में SIR के तीसरे चरण में 1 जुलाई से होगा विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। बूथ लेवल अधिकारीगण घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। शहर में नया रेंट कंट्रोल हुआ लागू, सभी एग्रीमेंट का पंजीकरण होगा अनिवार्य, किराएदारों को मिलेगी कानूनी सुरक्षा। और चंडीगढ़ शहर में प्रधानमंत्री की अपील का हुआ असर, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी नहीं करेंगे हर बुधवार को सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल। सप्ताह में एक दिन साइकिल या सार्वजनिक परिवहन से कार्यालय पहुँचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस भर्ती नियमों में हुआ बदलाव, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए भी खुले रास्ते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से दिया गया सर्टिफिकेट बनेगा आधार। कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए खास योजना की शुरू, प्रगतिशील किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की रोड सेफ्टी टीम ने सेक्टर 23 के चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में स्कूली छात्रों को नियमों के प्रति किया जागरूक। CBSE 12वीं परिणाम में पंचकुला क्षेत्र 12वें स्थान पर रहा, 85.73% रहा परिणाम और लड़कियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी परेशानी, समाज सेवी सुरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जल्द समाधान निकालने की मांग की। उधर नवनिर्वाचित महापौर श्यामलाल बंसल ने कहा, शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान, पारदर्शी व्यवस्था और युवाओं के विकास पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। अब कुछ सुर्खियां पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से, उससे पहले ये संदेश।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल में शिक्षा निदेशालय ने कहा, पंचायत चुनाव में बिना शिक्षक नहीं रहेगा कोई स्कूल, नजदीकी स्कूलों से अस्थायी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। एनसीबी ने हिमाचल से एंटी चिटा मॉडल की मांगी विस्तृत जानकारी, अन्य राज्यों को भी ये मॉडल सिखाया जाएगा। हिमाचल की बीएड और डीएलएड ट्रेनीज सुविधा और निवास स्थान के अनुसार दूसरे जिलों में भी कर सकेंगे टीचर ट्रेनिंग। चुनाव आयोग ने पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 15 जून से शुरू करने का किया ऐलान। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगी। राज्य में करीब 2.14 करोड़ मतदाता हैं। एसआईआर के लिए विदेश में स्थायी रूप से बसे पंजाबियों को सामान्य निवासी के रूप में करना होगा साबित, अन्यथा कट जाएगा उनका वोट। विदेशों में बसे नागरिकों का वोट जारी रहेगा या नहीं, इसकी जांच होगी। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के रेट 3 रुपए बढ़ गए हैं। हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लुधियाना से आज शुरू हुआ फ्लाइट A484 2:40 पर हलवारा से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। हरियाणा में स्मार्ट सिटी परियोजना और उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सीएनसी ऑपरेटरों के 10 पदों के लिए 21 मई तक आवेदन किया जा सकता है। 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन बचाने की पहल करते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी की और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। बेटियां फिर आगे, विभानी की दीपिका ने 500 में से 499 अंक लेकर टॉप किया। खेलों की सुर्खियां, कल आईपीएल में एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट से। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और चिराग सात्विक की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा ने मकाऊ में चल रहे 11वें सांडा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। ताशकंद में आयोजित अंडर 15 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं 27 पदक। मौसम की बात करें तो जैसलमेर देश का सबसे गर्म शहर रहा कल। इधर हरियाणा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की पूरी संभावना है। और चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। चंडीगढ़ शहर का तापमान कल अधिकतम रहा 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 23 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:06 पर, कल सूर्योदय होगा 5:32 पर। तो श्रोताओ, अब इस कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दी, 10:05 पर होगा प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज का विषय है परिवार हमारा संभल और आधार, इसे संजो कर रखने का करें प्रयास। और अब सुनीता भगत को आप दीजिए अनुमति, 10:05 पर फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।
2: आज का अखबार।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं श्रोताओं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: toi.
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 10:05 हुए हैं, तो लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो विषय हमने चुना है आप सबके लिए, वो है एक बड़ा ही प्यारा सा विषय, और वो विषय है हमारा परिवार, हमारे परिवार के रिश्ते, हमारे परिवार का अपनापन। जैसा कि विषय है कि परिवार हमारा संबल होता है, हमारा आधार है, और इसे संजो कर रखना यानी एक संयुक्त रूप से इसको संजोने का हमें प्रयास करना है। तो इसी विषय पर आज हम अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे। अब देखिए ना श्रोताओं, परिवार हमें संस्कार सिखाता है, प्रेम सिखाता है, एक दूसरे का साथ निभाना सिखाता है, सम्मान करना सिखाता है। तो परिवार साथ ना हो तो इंसान अकेला ही है। अच्छा, ये तो है हमारी राय। अब सुनती हैं हमारे जो श्रोता हैं, जो इंतजार में हैं हमसे बात करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए, उनके क्या विचार हैं। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो चंडीगढ़,
1: हेलो।
0: जी जी, नाम बताएं अपना।
1: नमस्कार जी, मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: अच्छा जी, मिसेस बेदी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
1: आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है
0: जी, बड़ी खुशी की बात है।
1: सबसे पुरानी लिस्नर हूँ मैं।
0: अच्छा जी,
1: रेडियो की 65 साल पुरानी लिस्नर का।
0: अच्छा जी, तो आप तो जानते ही होंगे हम आकाशवाणी
1: के लिस्ट हूँ सुनने की।
0: अच्छा जी, तो फिर तो आप जानती ही होंगी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
1: 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं तो आकाशवाणी में कभी सिलेक्ट भी हुई थी, बहुत देर से अच्छा जुड़ी हुई हूं।
0: अब ऐसा है ना कि आप जैसे श्रोता जुड़े रहे आकाशवाणी के साथ, इसीलिए इतना लंबा सफर तय कर पाई आकाशवाणी। अच्छा, तो आज का विषय
1: था आपका ऑफिस, तब मैं अनाउंसर सिलेक्ट हुई थी पर मैंने जॉब नहीं की थी।
0: जी, खुशी हुई मुझे ये सुनकर। लौटते हैं अपने विषय पर। आज का हमारा जो विषय है,
1: देखो, परिवार नाम की संस्था टूट चुकी है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं।
0: जी,
1: जैसे हमारे ग्रैंड मदर हमारे पास थे, तो यहाँ बुआ जी के बच्चे आने रहने, तो पेरेंट्स जो शिक्षा देते थे वो आज के पेरेंट्स नहीं देते।
0: अच्छा, मिसेस बेदी, ऐसा है कि ये आपका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है ना, तो अगर हम एक कहते हैं ना, एक वास्ट प्रस्पेक्टिव से देखें।
1: बात ऐसे है ना, आप मेरी बात, क्योंकि मैं तह तक जाती हूँ कि हम लोग जो थे, हमें पेरेंट्स ये सिखाते थे, कोई घर में आई है नहीं कहना कि मेरा बेडरूम है, आप नहीं रह सकते। जो आया किसी उम्मीद से घर पे आया।
0: जी जी,
1: ठीक है, रिश्तेदारी आई है, मेरे ग्रैंड मदर थे, हम तब 7वें 8वें में पढ़ते थे। जब वो आए तो हमारे फादर ने कहना, जब वो आवाज लगाए झट से भाग के जाओ।
0: जी जी,
1: तो अब जो है बच्चों के अपने कमरे हो गए, कोई किसी के घर आता पूछता पहले कंप्यूटर है आपके पास, ये है वो है, उनको ये सिखाएं कि जहां जाए वैसे हो जाए। ग्रैंड पेरेंट्स को साथ रख के कोई बच्चे खुश नहीं होते आजकल, बहुत कम खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे इंटरफेरेंस है। जबकि ये शिक्षा देने की, परिवार को बनाने की जिम्मेवारी ज्यादा तो माँ पर होती है।
0: दरअसल हमने इसीलिए विषय यही चुना है, इसीलिए ये विषय चुना है कि परिवार ही हमारा आधार है,
1: आधार
0: है, वही हमारी एक कहते हैं ना ताकत है, तो उसे संभालना पड़ेगा।
1: सुनीता जी, जैसे हम अब अकेलापन बहुत महसूस करते हैं।
0: जी जी,
1: ठीक है, जो पर कोई आ गए, हम मेरे जैसी, मैं तो ये नहीं है कि प्राइवेसी, मेरे कमरे में कोई ना सोए, मेरी चीज को कोई नहीं, नहीं, जो आया है इसी उम्मीद से आया आपके पास,
0: जी,
1: अपना घर समझ के आया। ये फीलिंग आजकल बच्चों में जब तक पेरेंट्स नहीं डालेंगे, वो

0: परिवार पूरा कभी बन नहीं सकता। न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है।
1: आपकी बातें बहुत सही हैं, बहुत अच्छा कह रही हैं आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो श्रोता सुन रहे हैं ना आपको, वो भी इन बातों से जरूर सीख लेंगे।
0: क्योंकि देखिए जो न्यूक्लियर फैमिली का क्या है, मदर जॉब पे चली गई, बच्चे जो है अकेले रह गए, उनकी ग्रोथ बहुत बिगड़ रही है।
1: जी,
0: मेरे घर के बिल्कुल पीछे स्कूल है, कैसे टीचर्स चिल्लाती हैं उनको, अगर रॉन्ग को रॉन्ग कर देती हैं तो पेरेंट्स लड़ने को आ जाते हैं। परिवार बनाना है तो बच्चों को भी मजबूत बनाइए, खुद भी मजबूत बनाइए।
1: जी बिल्कुल सही बात कही है आपने, आपने समय निकाला हमसे बात की, आपका बेहद शुक्रिया। हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं, उससे पहले ये संदेश आप सुन लें।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी तो हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज का विषय परिवार से जुड़ा हुआ है। परिवार हमारा आधार है, हमारी ताकत है, हमारा संबल है, तो इसे संजो कर रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। सुन लेते हैं हमारे अगले कॉलर, उनके क्या विचार हैं। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: चंडीगढ़।
2: हाँ मैम नमस्कार।
1: नमस्ते,
2: मैं कुमार बोल रहा हूँ।
1: जी सुरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं सेक्टर 51 से बोल रहा हूँ जी,
1: चंडीगढ़ शहर से। अच्छा जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
2: हाँ जी, आज का विषय बहुत अच्छा है मैडम जी।
1: जी जी
2: हाँ जी, ये परिवार का जो परिभाषा है बहुत ही सुंदर है। परिवार में जब हम सब इकट्ठे होते हैं, भाई बहन माता पिता और सब, तो हमने विचार आदान प्रदान होते हैं, प्यार मोहब्बत संस्कार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर परिवार ही नहीं है तो सुनसान सा हो जाता है, वो घर ही नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, आज के समय में जैसे लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हो गए हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो उसी समय अगर आप परिवार
2: है और हर कोई बिजी है,
1: अब ऐसे में ना आप परिवार के साथ बिताया हुआ अगर एक एक क्षण भी याद कर लें, थोड़ा सा समय भी आप याद कर लेना, तो अपने आप ही दिल को एक सुकून मिलता है।
2: हाँ जी
1: जी जी,
2: तो परिवार में रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं और आपस की अपने मन की बात कह सकते हैं, और परिवार से ही हमारा आगे समाज बनता है, और समाज में ही जब हम उन्नति करते हैं तो हमारा देश एक उन्नत देश बनता है। परिवार का बहुत ही महत्व है जी।
1: बिल्कुल महत्व है, परिवार अगर साथ हो तो हर परिस्थिति का आप अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। आपकी बातें अच्छी लगी हमें, आपने हमें कॉल किया, आपका धन्यवाद। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो चंडीगढ़ सुनीता जी, नमस्कार।
1: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला कोट खाई से।
1: अच्छा जी, शिमला पहुँच गए हम।
3: जी जी जी जी,
1: मौसम तो अच्छा है वहाँ पर।
3: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, मौसम है और बहुत बढ़िया है।
1: ऐसा कीजिएगा, मौसम विभाग जो है आपका वहाँ पे, तो वो समय समय पर कुछ चेतावनी दे देता है ना, आने वाले दिनों में क्या होने वाला, वो जरूर आप सुनते रहिए, क्योंकि कई बार होता है मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है।
3: नहीं नहीं, वो तो मैं सुनता रहता हूँ आकाशवाणी शिमला के माध्यम से।
1: जी बहुत अच्छा करते हैं। और परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
3: जी जी जी, आज का विषय बहुत अच्छा है कि परिवार का ये है कि हम परिवार में देखो हमें धन दौलत या ऐसा आराम चाहे ना मिले, लेकिन अगर हमारा परिवार खुश हो रहा है तो हमारे सबसे बड़ी धन दौलत।
1: हाँ, क्योंकि परिवार ही हिम्मत भी देता है और चेहरे पे मुस्कान भी आती है।
3: क्योंकि अगर मानो कि अगर परिवार का सदस्य कोई परेशान है या कोई समस्या है, वो क्या कहते हैं, वो हौसला देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम आपके साथ है, आप ऐसा करो।
1: और सबसे बड़ी बात है, जी जी,
3: सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार में जो हमारी जो माता महिलाएं होती हैं वो

0: हमें बड़ा सपोर्ट करती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है घर जो है एक एक पुरुष जो है एक घर को नहीं संभाल पाता, लेकिन परिवार की जो नींव होती है वो हमारी जो है महिलाएं होती है।
1: आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत सुंदर बात कही है और यही सच्चाई भी है।
0: महिलाओं के बिना कभी परिवार नहीं चल सकता। देखो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपना अपने दम पे परिवार चला सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं चलाते हैं। हाँ ये है कि पुरुष अगर बाहर जाता है तो कमा के लाता है तभी जाके परिवार चलता है, लेकिन कमाने से ज्यादा परिवार को संभालना, देखो परिवार की छोटी जरूरत पूरी करना, खाना बनाना।
1: आज सिर्फ पुरुष ही नहीं कमा रहे ना, आज तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर शायद उससे ज्यादा ही कमा रही हैं, है ना।
0: सबसे बड़ी बात है महिला कमा तो रही है,
1: और सही ये बात आपने बिल्कुल सही कही आपने कि कमा भी रही है, लेकिन घर को जो संभालना है ना सुबह से लेकर शाम तक, उसमें कहीं महिला का, हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनका ज्यादा रोल है, उनकी ज्यादा भूमिका है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कई बार घर का ये पता नहीं कि जैसे कि कौन सी चीज कहाँ रखी थी, और महिला को इतनी नॉलेज होती है कि अगर मन में कोई भी चीज हो तो आसानी से ढूंढ लेती है कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ है।
1: सही कहा आपने, वो कहते हैं ना जैसे जो घर है ना, अगर हम उसको एक ताला मान लें तो उस ताले की जो चाबी है ना वो हमारे घर की महिला ही है।
0: महिला ही है, तो इसलिए महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिन अगर कोई चाहे जितना भी बड़ा पुरुष क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन वो परिवार को नहीं संभाल सकता।
1: जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और घर की महिला अगर रूठती है ना तो उसे फौरन ही मना लेना चाहिए। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: एक

0: जी, जब परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिल जाते हैं ना, तो फिर मैं पीछे रह जाता है और बन जाते हैं हम। और भारतीय संस्कृति में ये जो हमारे परिवार है ना, इनकी यही खूबसूरती है, यही इनका महत्व है। चलिए इस प्रोग्राम में अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: यश कुमार वर्मा जी, हर भी नमस्कार।
0: जी जी जी, यश जी कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा जी, आपका परिवार कैसा है?
2: परिवार तो बढ़िया है, लेकिन परिवार में हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं।
0: अच्छा जी,
2: तो ऐसा है कि आज ना सबसे पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं हम, सभी सुनने वालों को इसकी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
0: जी जी, शुभकामनाएं आपकी हमारे श्रोताओं तक पहुंच गई। आपको क्या मानना है हमारे परिवारों के लिए?
2: मानता ऐसा होती है कि बहन की जैसे ना आपको बहन कहते हैं
0: जी,
2: बहन ही मानना चाहिए हमें। ये नहीं कि हम सामने तो कहें बहन है, पीछे में छोड़ो यार क्या करना।
0: जी जी, तो आपका ये कहना है कि परिवार में अगर हम हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं ना वो एकदम सच्ची रहनी चाहिए, एकदम खड़ी रहनी चाहिए, तभी जो परिवार है खुशहाल रह सकता है। जी यश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है।
2: बहन जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते
0: जी जी,
2: रिश्ते भी प्यार से ही बनाए जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, रिश्ते प्यार से ही निभाए जाते हैं। प्यार हो, अपनापन हो, तभी रिश्ता निभता है और तभी परिवार इकट्ठा भी रह पाता है, उसकी सुंदरता भी बनी रहती है।
2: जैसे माँ को आजकल माँ को माँ का जन्म नहीं होती है।
0: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल,
2: देवी मानते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे कैसे बोलते हैं।
0: जी आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो, हाँ दीदी।
0: जी जी नमस्ते, आप अपना नाम बताएं।
3: हमारा नाम दीदी सिया तिवारी, सेक्टर 9 पचपुरा से वक्ती दिन होते
0: हैं। अच्छा जी भाई, आप पहले थोड़ा सा धीरे धीरे बात कीजिए, आप थोड़ा तेज बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता और हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ आएगा ना।
3: सही बात।
0: अच्छा, तो सुन लिया, सुन लिया आपने आज का हमारा जो विषय है?
3: आज का
0: परिवार है, आज का विषय परिवार है, कैसे हम मिलजुल के रहते हैं और कैसे हमारा आधार है ये परिवार, परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं है।
3: सही बात है दीदी। देखो, घर का जो जो मुखिया होते हैं, मेन जो मालिक, वो जो जैसा कहा है वैसा हर एक आदमी को सुनना चाहिए।
0: हाँ,
3: और फिर प्यार से, प्यार से, मोहब्बत से घर पे तो रहना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल ऐसा नहीं करे कि उसके किसी के दिल पे तो घर पे जो हो सब है उसको तकलीफ में हो दिल पे, क्योंकि सब लोग प्रेम मोहब्बत प्यार से सबको जो घर पे पूरे परिवार को रहना चाहिए। दीदी
0: जी बड़ी अच्छी बात कही है आपने, प्यार मोहब्बत ही परिवार का ना आधार होता है। जिस घर में प्यार मोहब्बत नहीं है तो वो घर घर नहीं होता है।
3: जैसे कोई आदमी घर पे गर्म हो गया तो एक सामने वाला गर्म ना हो, ठंडा रहा है, वो उसमें प्यार से तुम्हें बोलता रहा है, उसके हंसता रहा है, जो दोनों आदमी जो गर्म हो गए तभी तुम्हें झगड़ा होता है। छोटे छोटे बात के लिए तुम्हें झगड़ा तुम्हें कर लेते हैं, ऐसा घर में तुम्हें नहीं करना चाहिए, किसी को घर में कलेश नहीं देना चाहिए।
0: हाँ, यानी कि हमें सहनशील होना चाहिए, है ना?
3: बिल्कुल,
0: सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की बात अगर बुरी भी लगे तो उसे मन में रखिए और मुस्कुरा कर प्यार से जब समय मिले तो बता दीजिए कि ऐसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था और आगे से हम सब ऐसा नहीं करेंगे, है ना? गलती अगर हो जाती है तो वो प्यार से निपटारा हो जाता है उस बात का। हर समय कलेश करना सही नहीं है।
3: क्योंकि दीदी जो वो आजकल आदमी छोटे छोटे बात के लिए उसको बना देते पतंगर, तो छोटे छोटे बात के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो गुस्सा ऐसा दीदी कि गुस्सा जो आदमी करता है तो बाद में अपना ही नुकसान होता है और अपना शरीर भी थोड़े वो थोड़े होता है खराब, तो इसके लिए गुस्सा नहीं करे। देखो प्यार से मोहब्बत है, जैसे आदमी प्यार से तुम्हें भगवान भी है तुम्हें मिलते हैं, तो ऐसा प्यार मोहब्बत तुम्हें सबको करना चाहिए।

0: प्यार से अगर हम रहेंगे ना तो मुश्किलें कितनी भी आए परिवार मिलकर उनका बोझ हल्का कर देता है।
1: अगर दीदी देखो हमारे से घर पे हमारी माँ जो कोई भी गलती करे तो हम बोलते हैं चलो होने दो, आखिर माँ का हो गया तो कोई बात नहीं, गलती हो गया सबसे होता है, इंसान से क्या देवता लोग से बीच में गलती हो जाता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है आपने
1: दीदी। और फिर हमारी वाइफ भी जो कोई भी गलती हो गया तो वो के पछताने लगती है, रोने लगती है, उनका बीपी पर जाता हमका नहीं होने दो, एक नहीं एक लाख का हाल हो तो होने दो, तुम अपना सही रहो।
0: नहीं आप बहुत सहनशील हैं, आप बहुत सहनशील हैं, हमें पूरी आशा है कि आपका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद।

0: Girls Hospital. Call करें 9814128667 पर और बाइल से मुक्ति पाएं।
1: तिखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो कि आ जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.pikaRRenterprises.com पर।

क्लस्टरिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है हेलो चंडीगढ़। मैं हूँ आपके साथ आप सबकी अपनी सुनीता भगत। हमारा आज का विषय है परिवार। परिवार यानी जो हमारा संबल है, हमारा आधार है, और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने परिवार को बनाए रखें, संजो कर रखें। सुन लेते हैं हमारे जो अगले कॉलर हैं, इनका क्या मानना है। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं रामदीन।
0: रामदीन जी, अच्छा कहाँ से, किस जगह से आप बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी खिदमत गांव से जी, रामवीर बोल रहे थे।
0: खिदमत गांव।
1: हाँ जी।
0: अच्छा ठीक है जी, बताएं क्या आप सोचते हैं इस विषय के बारे में?
1: हाँ देखिए दीदी, जो परिवार है पहले तो वो हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जब हम परिवार में रहते हैं सुख दुख जो भी होता है वो
0: साथ मिलकर हम बांटते हैं। जी जी
1: जी। और जब भी कोई कहते हैं कि एकता में बल है, जब परिवार एक रहेगा तो हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी और हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए परिवार में जब एकता नहीं होगी ना, तब बाहर की जो ताकतें होती हैं, बाहर की जो लोग होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से आपके घर में कह सकते हैं कि सेंध लगा देते हैं, है ना? वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी बात से आपके घर परिवार में कला का एक माहौल बना देंगे, कलेश करेंगे। तो एकता अगर आप में होगी तो आप हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना जी, आपने बिल्कुल सही कही। तो मिलजुल कर ही हमें, हम सबको रहना चाहिए, और चाहे कोई भी परिस्थिति आए, अगर मिलकर हम रहेंगे तो उसका सामना हम अच्छे से कर सकते हैं।
1: हाँ जी, और दीदी जो राष्ट्र की इकाई है परिवार ही है, जब हमारे परिवार ही होंगे तो राष्ट्र तो अपने आप एक होगा।
0: जी बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और वैसे भी ना घर परिवार में चाहे वो बड़े बड़े पल हों या छोटे छोटे लम्हे हों, उन सबको जब हम साथ मिलकर जीते हैं ना, तो जिंदगी जीने का और ही मजा आ जाता है।
1: बिल्कुल दीदी
0: जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत धन्यवाद।
1: जी

0: जी ऐसा ही होता है ना, जब हर कोई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा लेता है तो बहुत सारी दुख परेशानियां जो हमें आती रहती हैं वो कम हो जाती हैं। बात फिर वही आती है कि इकट्ठे मिलकर रहें, एकता रहे, प्रेम रहे, प्यार रहे, मान सम्मान रहे ना परिवार के सदस्यों में, तो फिर जीवन खुशहाल ही रहता है। अच्छा जी, तो अब हम ले लेते हैं इस प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो चंडीगढ़,
1: सुनीता भगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सतीश कुमार सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी।
0: अच्छा जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
1: आप भी साथ साथ हो, हम भी साथ साथ हैं
0: जी। हम साथ साथ हैं
1: जी, सारा साथ साथ होना चाहिए जी।
0: देखिए आप सभी जो श्रोता है ना, हमारे आकाशवाणी परिवार के ही सदस्य हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपसे बात करते हैं, अपने मन की कहते हैं और आपकी भी सुनते हैं। तो आप
1: दिल मिल गया, यही तो परिवार की परिभाषा है।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल,
1: दिल से दिल मिलना चाहिए जी।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, मन मुटाव नहीं होना चाहिए।
1: हमारे घर जो बहू आती है उनको, उसको भी हम अपनी बेटी समझे जी।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, पराए घर से आई है।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: दहेज की तो डिमांड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दहेज तो कई परिवारों को तोड़ के रख देता है, परिवार में मन मुटाव आ जाता, प्यार तो रहता ही नहीं।
0: हाँ, ये भी एक पहलू है जिसको आपने सामने रखा है, ये भी एक पहलू है कि घर परिवार सिर्फ वही नहीं होता कि जो खून के रिश्ते होते हैं, जो बाहर से जुड़ते हैं ना हमारे साथ, चाहे वो घर की बहू है, दामाद है, या फिर हमारे जो मित्र भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, है ना, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो परिवार की, हमारी परिवार की एकजुटता में वो जैसे बंध से जाते हैं, हमारे अपने ही हो जाते हैं, हमारे ही रंग में रह जाते हैं।
1: बहू आगे हमारा बंश चलाती है, हमारे परिवार को आगे लेके जाती है।
0: हाँ जी, तो
1: अगर हम बहू को ही तंग करेंगे या कुछ करेंगे, हमारा तो सत्यानाश खुद ही हो जाएगा
0: जी, जी बिल्कुल,
1: ठीक है ना जी।
0: जी जी जी,
1: बाकी बहू भी लड़के के मम्मी डैडी को अपना समझे जी।
0: हाँ जी,
1: मम्मी डैडी कहे जी।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए अपना कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है,
1: जो बुजुर्ग है ना जी, अपना साथ साथ रखना।

0: जी,
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
0: बाकी
1: सही।
0: जो पुरुष लोग हैं वो अपनी घरवाली के साथ काम कराएं जी, हाथ में हाथ बटाएं, कहने से कुछ नहीं जी,
1: जी
0: सम्मान कर दो, सम्मान तो हाथ कुछ करने से होता है।
1: अच्छा, ये बात आपने बड़ी कारगर कही है, बड़ी सही बात कही है। वैसे ही आज जमाना काफी बदल गया है, दौर
0: जो औरतें बाहर काम कर रही हैं, दफ्तर में पुरुष के साथ काम कर रही हैं जी।
1: जी मैं
0: तो
1: यही बात
0: कहूँ कि घर का काम साथ करें
1: जी, यही बात कहने की कोशिश कर रही
0: हूं। भाई लोग भी बहनों के साथ काम करें जी, भाई लोग कहीं करते ही नहीं जी, बहनें काम करती रहती हैं, इसमें मन मटाव बहुत रहता है जी।
1: जी जी,
0: परिवार में अगर बहनें ही काम करती रहेंगी,
1: जी जी जी,
0: पुरुष भाई लोग नहीं करेंगे,
1: देखिए
0: तो बहुत खटास पैदा होती है।
1: जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपके विचार अच्छे लगे हमें। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि खटास नहीं होनी चाहिए दिलों में, और एक दूसरे का भरपूर मान सम्मान होना चाहिए। आपने फोन किया, जी जी,
0: एक बात है जी, जब भी जाएं तो साथ साथ लेके चले, और जहाँ प्यार किया है उसको निभाएं जरूर। जब हम प्यार ही नहीं निभाएंगे तो परिवार कहाँ से रह जाएगा
1: जी। बिल्कुल, एक्चुअली जो परिवार का जो आधार है ना, वो प्यार, समर्पण और एक दूसरे का मान सम्मान ही।
0: त्याग है जी, त्याग करना हमें आना चाहिए।
1: बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बड़ी अच्छी बात है।
0: नफरत का त्याग करना चाहिए,
1: बहुत अच्छी बातें कही आपने, धन्यवाद आपका। हेलो चंडीगढ़,
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी, नमस्कार,
2: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी।
1: अच्छा जी, सतपाल जी कैसे हैं आप?
2: ठीक है मैडम।
1: और आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं?
2: परिवार तो मैडम आजकल ऐसा हो गया है कि हम दो हमारे दो।
1: तो अच्छी बात है ना।
2: और मियाँ बीवी दोनों वर्किंग होने के कारण बच्चे आजकल कैच में बड़े होते हैं, तो परिवार की जो पहले एक आनंद था परिवार के सदस्यों के साथ रहना, चाचा चाची ताया ताई सबके साथ मिलजुल कर रहना,
1: जी जी जी जी जी जी,
2: वो बातें अब कहीं नजर नहीं आती है।
1: देखिए, दौर बदला है, बदल चुका है, अभी भी बदल रहा है, बदले हुए दौर भी इस तरह की जो बातें हैं वो हम जरूर देख सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए हमने आज ये विषय चुना है सबको ये बात समझाने के लिए, छोटे हों बड़े हों, कि परिवार ही एक आदमी का आधार होता है ना। छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवार को एकजुट होकर ही रहना चाहिए। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, चाचा है, मामा है, यू नो, उस तरह की जो बातें, उस तरह की जो रिश्ते हैं वो जरूर आजकल हैं तो सही, ये रिश्ते बेशक दूर दूर हैं, लेकिन दिलों में जो दूरी है ना वो नहीं होनी चाहिए।
2: दिलों में तो ऐसा है मैडम कि बचपन में ही जो आपको संस्कार मिलते हैं किसी को भी, हम सभी को
1: जी,
2: एक दूसरे की इज्जत करना, सबके साथ प्यार से बोलना, एक परिवार में ही हमें सीखने को मिलता है।
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: और आजकल तो ये समस्या आ गई है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ा जा रहा है, उनका खर्चा लोग उठाने को तैयार है लेकिन अपने साथ रखने को तैयार नहीं है।
1: जी जी जी, और
2: ये परिवार बिखरता सा जा रहा है, इसकी बड़ी चिंता है हमें।
1: आप सही कह रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चर्चा हम आपस में कर रहे हैं ना, ये जो बातचीत हम आपस में कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जहाँ पर शायद ये समस्या होती होगी, जहाँ पर उतना सम्मान नहीं दिया जाता होगा अपने माता पिता को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुनकर ना, ये बातचीत सुनकर जरूर वो इस मसले पर ध्यान देंगे, और जरूर उन्हें ये एहसास होगा कि माता पिता से बढ़ के तो भाई कुछ भी नहीं है। और घर परिवार में जब आपके बच्चे दादा दादा दादी दादी कहते हैं ना, तो सच मानिए परिवार में बड़ी खुशहाली आती है। आपने हमें फोन किया,
2: वही वही दोहराना चाह रहा था एक बार कि जो बच्चे दादा दादी के पास पलते हैं, बड़े होते हैं
1: जी,
2: वो उनकी जो एक संस्कारी बच्चे होते हैं,
1: हाँ जी,
2: आगे
1: जी
2: बढ़कर
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, उन बच्चों में संस्कार अधिक पाए जाते हैं, और जीवन जीने का उनका जो एक दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है ना, वो भी बड़ा पॉजिटिव होता है। तो आपने हमसे बात की, आपका बेहद शुक्रिया।

0: प्यारी सी मीठी सी नोकझोंक पोती पोतियों की अपनी दादी अम्मा से। सच कही अच्छा नहीं लगा आपको ये सुन के? और अच्छा लगता है जब इस तरह की नोकझोंक होती है ना आपस में। तो हम उन सब से एक बार फिर से विनती करेंगे कि बच्चों को नाना नानी दादा दादी के साथ रहने दें, उन्हें वो परिवार का एक जो असली सुख होता है ना, परिवार होता क्या है, साथ रहना क्या होता है, किस तरह से महसूस होता है, ये चीज़ बच्चों में आने दीजिए। तो आप सुन रहे हैं इस समय हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम, लेते हैं प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं पटियाले पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: अच्छा जी, पटियाले में सब कैसे हैं, ठीक ठाक?
1: हेलो
0: जी, जी हम सुन रहे हैं आपको। हेलो
1: हेलो
0: जी, आप अपनी रेडियो का वॉल्यूम जो है, आवाज जो है उसे कम कर दीजिए, रेडियो को थोड़ा दूर रखिए ताकि आपको ठीक से सुनाई दे। जी देखिए ये कॉल कट गया, और हम आज भी जैसा कि हमेशा अपने सभी श्रोताओं से हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी हमें कॉल मिलाते हैं रेडियो सेट का वॉल्यूम ऊंचा ना रखें, आवाज़ ऊंची ना रखें, और रेडियो सेट को हो सके तो बंद ही रखें या फिर अपने से काफ़ी दूर रखें। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं शरण पल्ला बोल रहा हूँ जी, पटियाले पंजाब से जी।
0: अच्छा जी, तो आपके घर परिवार भी सब अच्छे हैं?
1: सब अच्छे हैं, लेकिन मैं सब ने बहुत अच्छा बोला, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आधार होता है ना घर का, बुजुर्ग होते हैं
0: जी, बिल्कुल होते हैं,
1: तो मकान तो बहुत है तो घर तो परिवार से ही बनता है, लेकिन बुजुर्गों की, कईयों ने बोला कि बुजुर्गों की इज्जत, वो बात सही है, आपने बोला कि कईयों घरों में हो सकता है, लेकिन आजकल बड़े बुजुर्ग घरों के जो ताले है ना वो है नहीं घरों में।
0: जी जी,
1: ये जो बुजुर्ग होते हैं ना ये घर के ताले होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो जिंदगी के हर मोड़ पर हमें चाहिए।
1: सिस्टर बुजुर्गों की आजकल, मेरी 70 साल उम्र हो गई है, बुजुर्गों का आधार तो रहा ही नहीं।
0: जी जी,
1: अलग रहते हैं बुजुर्ग अकेले, कहीं कोई विधवे रहते हैं जो आजकल वृद्ध आश्रम बनाए हुए हैं, ये तो बनाने नहीं चाहिए, ये जो बना दिए इसलिए बच्चे बेपरवाह हो गए, पैसा खर्च करते हैं, माँ बाप को छोड़ आते हैं
0: जी,
1: लेकिन पास किसी के नहीं माँ बाप, परिवार तभी बनेगा जब बुजुर्ग साथ होएंगे। तो
0: आपकी भावनाओं की हम पूरी कदर करते हैं और मान सम्मान है हमें पूरा आपकी भावनाओं का, और हम जरूर ये उम्मीद करते हैं।
1: मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गों को घर रखो, ये नहीं है कि चाचा मामा मासी नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग आते हैं ना उनको रखो, परिवार उनसे बनेगा, आधार वही है।
0: जी जी,
1: आपने आधार की भी बात की ना, आधार तभी बनेगा जब बुजुर्ग घर में रहेंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो बुजुर्ग है ना वो तो एक छायादार वृक्ष की तरह है ना,
1: वृक्ष छाया है जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने,
0: बुजुर्गों का साया सर पे रहे तो जिंदगी में ना छांव आप महसूस करते हैं, धूप नहीं करते।
1: लेकिन कोई भी बात करे, अपनी हाथ बीती बात करे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ बुजुर्गों की जितनी है, बुजुर्गों का अकेलापन रह गया।
0: जी जी,
1: अकेलापन तो आपको मालूम है कि मौत से भी डराता है।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो भी सुन रहे हैं बड़ी गंभीरता से इस बात को वो लेंगे, और अगर अपने घर में
1: या आस पास कहना चाहता हूँ कि मकान तो सब बनाते हैं,
0: घर बनाना मुश्किल हो जाता है,
1: घर बनाना बहुत मुश्किल है, दीवारें तो खड़ी हो जाती है, बीच में चींच

0: होती, ठीक है बर्तन खड़केंगे घर में, बाहर की अंदर की बात बाहर मत जाए।
1: लेकिन फिर भी अपने तो अपने ही होते हैं ना, फिर भी अपने तो अपने ही होते हैं, तो मन में इतना मलाल भी नहीं रखना चाहिए और मिलजुल रहना चाहिए।
0: कई दफा दुख खोलने से ना दुख हल्का भी होता है मैडम।
1: जी जी बिल्कुल, अच्छा किया आपने हमसे बात की, अपने मन का बोझ जो है वो जरूर आपको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा होगा और आपकी जिंदगी में
0: महसूस हो रहा है। बात बहुत देर से ट्राई मार रहा था, मैं करता रहता हूँ सबसे।
1: बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। जी जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं पूरी
0: पेशकारी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बीच में समझाते भी बहुत अच्छा है, आपका भी कहना मानना पड़ेगा लोगों को।
1: जी बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन सुखमय होगा। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं परवेज अहमद बनारस से आपसे बात कर रहा हूँ मैम।
1: अच्छा जी परवेज अहमद जी बनारस, अच्छा जी बड़ी खूबसूरत जगह है, धार्मिक जगह है।
2: एक बार पहले भी बात मेरी हुई थी मैम।
1: कैसी हैं
2: आप? प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। परिवार के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं भी सोचा मैं भी कुछ बोल दूँ।
1: बहुत शुक्रिया आपका जी, बोलिए बोलिए।
2: जी जी मैं भी संयुक्त परिवार में रहता था जब पढ़ता था, अभी तो मैं काम के सिलसिले में मैं बनारस रहता हूँ। बस मेरा बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था मेरा, मेरे हम लोग छह भाई और तीन बहन और मम्मी पापा के साथ रहते थे गांव में।
1: अच्छा जी।
2: जी हम लोग संयुक्त हो गए, लेकिन अब सभी लोग भाई की शादी हो गई, सभी लोग बड़े हो गए, सभी लोग के बच्चे हो गए, और मेरी भी जो की शादी है, मैं बनारस शिफ्ट हूँ अभी। अच्छा। तो फिर मैं अपने बच्ची का भी शादी कर दिया हूँ मैम अभी। जी आओ, मैं अपने अपने नातिन को देखने आया हूँ, मेरी एक छह महीने की नतनी है।
1: आपके परिवार के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, और
2: जी जी
1: हमें उम्मीद है।
2: आप बोल रहे थे नाना नानी के पास बच्चों को रहना चाहिए, तो मैं अपनी नतनी को ही देखने के लिए मऊ जिला आया हूँ, जो यूपी में मऊ जिला पड़ता है।
1: चलिए आप उनके साथ समय बिताइए और खुशी खुशी परिवार के बीच में रहिए। आपने
2: जी जी, अब मैं सभी लोग से यही कहता हूँ कि अगर संयुक्त परिवार है तो मैम तो संयुक्त परिवार बहुत ही अच्छा होता है, और लेकिन काम के सिलसिले में आदमी बाहर हो जाता है तो एकाकी परिवार हो जाता है, लेकिन संयुक्त परिवार बहुत ही अच्छा होता है
1: और दूर होने से वो अपनापन खत्म नहीं होता है ना।
2: जी जी मैम,
1: प्रेम बना रहता है।
2: और जो कि संयुक्त परिवार की जो हमेशा यादें, जो बचपन की जो हमेशा यादें जो हमेशा दिल में रहती है, दिमाग में रहती है कि हम भाई बहन आप पास के पास पड़ोस के जी हमारे जो दोस्त थे कैसे रहते थे, बचपन में क्या खेलते थे, वो ताउम्र हम लोग के हमेशा जहन में रहती है मैम।
1: देखिए बचपन की यादों से लेकर ना जीवन के महत्वों की हर मोड़ पर, हर मोड़ तक परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है।
2: जी जी
1: अच्छी बात है कि फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
1: जी जी बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं?
3: मैम नमस्कार जी, मैं पटियाला से सनी कंबोज बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा नमस्ते जी, सनी जी कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। अच्छा आप बताएं?
1: हाँ हम बिल्कुल बढ़िया हैं, देखिए स्टूडियो में बैठे हैं आपके साथ बात कर रहे हैं।
3: प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं बहुत मजा आता है, मैं ज्यादा सुनता ही हूँ, कॉल मेरा कभी कभी दो महीने में एक बार लगता है जी।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं ना इंतजार में भी मजा होता है, और जो चीज इंतजार के बाद मिलती है ना उसका मजा तो दुगना हो जाता है।
3: श्रोता है अपनी जो बातें बताते हैं उनको हम एंजॉय करते रहते हैं जी, उसी में बहुत मजा आता है।
1: चलिए पर आज आप भी अपनी बात कह दीजिए, श्रोताओं तक पहुँचाइए आपसे बात की
3: जी। मैं कहना चाहता हूँ भी जब परिवार की बात हो रही है तो जैसे हम बात कर रहे हैं भी अकेला बड़ा महल खड़ा करने से ही नहीं घर में रौनक आती, जब उसमें स्वस्थ माँ बाप भाई बहन हंसते खेलते हैं ना तभी घर की रौनक जो है चार गुना बढ़ती है जी।
1: जी जी बिल्कुल,
3: नहीं तो अकेला बन जो घर को खा लेता है जी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
3: और घर के साथ साथ भी मैं तो कहूंगा हमारे जो पड़ोसी है ना जी वो भी हमारे परिवार की तरह ही है, जब कुछ सुख दुख होता है हमारे साथ खड़ते हैं जी, और जब हमें कुछ दुख होता है उनके भी आंख में आंसू आते हैं, तो हम सोचते हैं भी आसपास के जो भी लोग हैं सभी हमारे परिवार हैं जो हमारे साथ खड़ते हैं, तो उन्हीं के साथ ही जब शादियां होती हैं ब्याह होते हैं तो उनके साथ ही रौनक हमारी जिंदगी में आती
1: जी,
3: है।
1: सनी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, यही बात मैं पहले भी कह रही थी कि खून के रिश्ते ही परिवार नहीं होता, आस पड़ोस भी हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हमारे मित्र वो भी हमारा परिवार होता है। तो चलिए आपकी बातें बहुत अच्छी लगी आपने।

0: ख्याल है
1: जी। और एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है आकाशवाणी परिवार, जिसके साथ हम सारा दिन गीत और बातों को एंजॉय करते हैं जी। बहुत खुशी मिलती है,
0: बहुत पहुँचाते हैं हम आप तक, आपका ज्ञान भी बढ़ाते हैं हम, है ना, कितनी सारी सूचनाएं हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आप यूं ही आकाशवाणी परिवार के साथ जुड़े रहिए, आपने फोन किया, बेहद शुक्रिया। हेलो चंडीगढ़,
2: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: संजय बोल रहा हूँ, नागा से, डिस्ट्रिक्ट पटियाला से।
0: अच्छा जी संजय जी, हाँ जी संजय जी, आपके क्या विचार हैं?
2: आपका टॉपिक फिर अच्छा है आज, फिर टॉपिक सभी अच्छे होते हैं आपके, आज नहीं सभी अच्छे टॉपिक होते हैं
0: जी। हम इसीलिए समय समय पर अच्छे अच्छे विषय चुनकर लाते हैं कि आपस में जब बात होगी ना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान
2: होगा। उस वर की तो कोई रीस ही नहीं है जी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
2: आज आज के टाइम में तो संयुक्त परिवार बहुत, जिसके घर में संयुक्त परिवार है ना वो भगवान की कृपा उस पे पूरी है जी, बस मैं तो ये जानता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भरा पूरा परिवार रहे तो ही जीवन जीने का मजा आता है।
2: माँ बाप की बदौलत तो हम आज, मैं भी माँ बाप की बदौलत आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ अगर माँ ही ना जन्म देती तो मैं आपसे बात आपके विचार नहीं सुन पाता था मैं।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा, और देखिए ना हमारी कुछ परिवार के सदस्य विदेशों में भी तो बसे होते हैं।
2: विदेशों में तो चलो काम के लिए नौकरी के लिए बच्चे जाते हैं कभी,
0: लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है ना कि बेशक वो दूर है लेकिन फिर भी हम सब लोग जुड़े रहते हैं आपस में,
2: जुड़े
0: एक बंधन जो है वो जुड़ा रहता है।
2: जी
0: जी चलिए अच्छा लगा आपने हमसे फोन किया, हमसे बात की और आपके विचार हमने जाने, और हमें पूरी उम्मीद है कि श्रोताओं ने भी इसे सुना होगा और समझने की कोशिश भी की होगी।

0: जी, एक परिवार की बस यही पुकार होती है जब परिवार का कोई अपना बाहर चला जाता है, क्योंकि अपने दोहे अपने ही होते हैं। चलिए, समय थोड़ा कम है तो कुछ और श्रोताओं से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो चंडीगढ़।
1: सत श्री अकाल जी,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बंसी लाला जी, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला जी।
0: अच्छा जी, अम्बाले पहुंच गए हैं हम।
1: हाँ जी, अम्बाले।

0: जी कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक है। आप गाँव, आपका परिवार?
0: जी हम बिल्कुल ठीक है।
1: हमारा आकाशवाणी परिवार?
0: जी हमारा आकाशवाणी परिवार बिल्कुल ठीक है।
1: मना रहे हैं जी, कौन सा 90 साल हो गए? कितने हो गए जी?
0: 90 साल हो रहे हैं जी।
1: कल को मना रहे हैं जी, हम भी आ सकते हैं
0: जी? आप कोशिश कीजिए, अगर आ सकते हैं तो आ जाए।
1: कोई इसमें
0: कोई फीस नहीं,
1: फॉर्म भरना पड़ता है कहीं?
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा जी,
0: आपकी भावना जो है ये हम तक पहुंची, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद
1: आपका। हमको, हम भी आपको मुबारक देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप हमारे श्रोताओं की वजह से ही हम इतना सफर तय कर पाए हैं। आपके
1: हमारा बहुत बढ़िया परिवार है जी, हमारा जी आकाशवाणी।
0: अच्छा ये बताएं, आप आपका जो अपना घर का परिवार है उसके बारे में क्या आपके विचार हैं?
1: ज्वाइंट फैमिली अच्छा होता है।
0: संयुक्त परिवार अच्छा,
1: ज्वाइंट फैमिली इकट्ठा परिवार है
0: जी। जी
1: सुख दुख में काम आते हैं। हाँ, कोई कहीं अब हमारे बच्चे जा रही है घूमने जा रही है, पीछा मैं बैठा, रखवाली बैठा यहाँ
0: जी जी जी जी,
1: मैं बाबा बैठा, बच्चों का बाबा। हाँ जिंदा खुला, ये लोग नहीं लगाने की लोड़
0: जी।
1: जी ये परिवार अच्छा होना चाहिए, अपना पड़ोस के साथ भी ठीक होना चाहिए पड़ोसी।
0: हाँ जी बिल्कुल, अपने परिवार में भी सुख शांति बनी रहे,
1: साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए
0: जी, और हमेशा हमें साथ साथ ही रहना चाहिए।
1: हाँ, मेल मिलाप रखो
0: जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की।
1: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू।

जी, तो क्या समझे भैया आप? आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी हमारे रिश्तों को मजबूत बना देता है। एक साथ बैठकर बातें करना, हंसना, खाना खाना, एक दूसरे का हाल पूछना, बस यही छोटे छोटे जो पल है ना, हमारे परिवार को खास बनाते हैं और हमारी जिंदगी को खुशहाल बना देते हैं। क्योंकि आखिर में दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिवार के साथ अगर आप हैं तो सुखी हैं और संतुष्ट हैं। तो आज का विषय था हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में परिवार हमारा संबल और आधार, और इसे संजो कर रखने का हम करें प्रयास। इस समय कार्यक्रम का समय जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल किया, हमसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की, अपनी भावनाएं हमारे साथ

0: चर्चा की। तो अब सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार खुशहाल रहे, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपके कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।
0: आपने सुना प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। श्रोतो, इस समय 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
3: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। और हमारा फोन नंबर है
4: 8527449955। जी हाँ श्रोता, 8527449955।
5: ए परिंदे, यू जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ए परिंदे, यू जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। दोस्तों, उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सबके जीवन में दुख या परेशानी नहीं होती। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम निराशाओं में, परेशानियों में, उदासी में पड़ जाते हैं। पर आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आप अपनी आशा कभी नहीं छोड़िए। तो आशा बड़ी बलवान होती है। उम्मीद के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने भविष्य को आशाओं के साथ जोड़े बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, बिना आशा और भरोसे के कुछ भी करना संभव नहीं। जो आशा में विश्वास करता है, उन्हें उपलब्धि की राह मिल ही जाती है। आशा या उम्मीद ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। उम्मीद जीवन जीने का सहारा है। इसके जरिए बड़ी बड़ी जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उम्मीद ही डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? दरअसल जिंदगी में परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती। हमने जिस चीज या जिस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं होता, वो अचानक एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसी कठिन घड़ी में खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ही अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या है ये आशा? हम रात को सोते हैं इस उम्मीद से कि सुबह जीवित उठेंगे, ये है आशा। मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि इसका फल मिलेगा, ये है आशा। हम विवाह बंधन में बंधते हैं कि हमारा जीवन अच्छा खुशहाल बीतेगा, ये है आशा। किसी महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खो देना होता है। उम्मीद जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनका नाम है योगेश। योगेश जी को जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां शायद वो हार मान लेते, पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने

मेहनत से अपनी फसल उगाई, खेत तैयार किए, बीज का इंतजाम किया। पर दोस्तों, फसल उगने का इंतजार तो उन्होंने किया और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया और पानी खेत पर पूरी रीति से भर गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, उनकी सारी फसल सड़ गई। सोच के देखिए क्या बीती होगी उन पर, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कई लोग ऐसे समय पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं और दुख में, गम में डूब जाते हैं। पर ऐसे समय में जो हिम्मत से काम ले और अपनी आशा को कसकर पकड़ के रखे, अपनी उम्मीद का दामन थाम ले, वही जिंदगी का असली विजेता है।

ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी ऐना आपको एक और कहानी बताएंगी। जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी

ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी ऐना आपको एक और कहानी बताएंगी। जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ बाप का इस तरह से चले जाना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और दुख ने उसको अंदर ही अंदर घुटन में डाल दिया था। श्रोताओं, उसका दुख और उसकी घुटन उसके अंदर आत्महत्या का विचार ले आई और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और एक दिन जब वो आत्महत्या करने को जाने वाली थी, उसके दादाजी रेडियो पर एक कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके दादाजी को रेडियो सुनना बेहद पसंद था। पूजा बस घर के कुछ काम निपटा रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो इसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी रेडियो पर कार्यक्रम शुरू हुआ और उस दिन उस कार्यक्रम का विषय था आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। और ये शब्द जैसे ही पूजा के कान में पड़ा, उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और फिर आगे कार्यक्रम में बताया गया कि आत्महत्या कैसे एक गलत फैसला है और आत्महत्या करने वाले के परिवार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जब ये सब पूजा सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसको अपने बूढ़े दादा और दादी का चेहरा नजर आया। पूजा ने एकदम अपना फैसला बदल लिया और उसने सोचा कि जो तकलीफ उसको हुई है, उसके माता पिता के जाने के बाद वो कैसे अपने दादा दादी को ऐसा दर्द दे सकती है। पूजा उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से उसने वायदा किया कि वह गलती से भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब से वह अपने दादा दादी की देखभाल करेगी और अपनी जिम्मेदारी को उठाएगी।

देखा आपने, जिस चीज ने योगेश जी को हार नहीं मानने दी, उनको टूटने नहीं दिया, वह थी उम्मीद, आशा, होप। जी हाँ, पूजा को उस प्रोग्राम से जो मिला वह थी आशा। बस हमको भी यही करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने जीवन में आशा को पकड़ कर रखना है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक बार स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने जब इंग्लैंड से युद्ध किया तो वह युद्ध हार गया और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। पर राजा ने अपना राज्य वापस पाने को बार बार युद्ध किया, पर वह बार बार असफल होता गया। 14 बार उसने युद्ध लड़ा पर नहीं जीत पाया और भागकर एक गुफा में छिप गया। पर दोस्तों, वहां उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती, कभी वह ऊपर चढ़ते वक्त गिर जाती और कभी जाल बनाते हुए गिर पड़ती। राजा ने गौर किया कि ऐसा लगभग 20 बार हो गया था और आखिर में मकड़ी कामयाब हुई। तभी राजा ने

अपनी निराशा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, मेरे तो अभी 7 प्रयास बाकी हैं। और राजा ने फिर से उम्मीद का दामन थाम लिया और फिर खुद को तैयार किया। और जब फिर युद्ध किया तो वह जीत गया, उसको उसका राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम से यही उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो असफलता भी सफलता का रास्ता आपको दिखा देती है। कई बार बच्चे स्कूल में फेल होने पर निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं। कई बार लोग अपने व्यापार में सफल ना होने पर अपना प्रयास बंद कर देते हैं। कई बार किसान भाई फसल खराब होने पर निराश होकर गलत फैसले कर लेते हैं। पर बस यही नहीं करना है दोस्तों, जबकि ये ऐसा पल है जब आपको मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ के रखना है। क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है और प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर बात के पीछे भलाई होती है, पर तब जब हम अपनी आशा नहीं खोते, जब हम उम्मीद से गहरा रिश्ता जोड़ के रखते हैं। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा कि जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का घड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया और हालात कहते हैं हार मान लो, तब यही आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार और प्रयास करो। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस अपने जीवन में आशा का, उम्मीद का दामन पकड़ के रखिएगा। जी हाँ, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच का सफर उम्मीद ही तय कराती है।

0: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, 8527449955।
0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़िया। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आपने स्पॉन्सर प्रोग्राम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 11:15 हो चुके हैं। हमारा अगला प्रोग्राम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, ये लाइव फरमाइशी कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर।

Music, hashtag InstaFace. Instagram पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला. कार्यक्रम में म्यूजिक हैशटैग InstaFace के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. आज इस प्रोग्राम में है आपका साथी अनिल पुंज. इस प्रोग्राम में आपको मालूम है हम जब भी आपके साथ होते हैं इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं. और आज सबसे पहले हम फरमाइश जो पूरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं यसुदास के गाए इस गाने के साथ.

हम पहले शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों गीतों के लिए जो हमें फरमाइश मिली वो हम शामिल करते हैं। तो लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना है, ये गाना है दाग फिल्म से।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, ये फिल्म थी दाग। और इससे पहले आपने दादा फिल्म का गीत सुना यसुदास की आवाज में। इन दोनों गीतों के लिए फरमाइश हमें मिली परवेज अहमद शुक्ल पूरा बनारस से, और सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, दीवांशु, दीपांशु, चित्रांशु गुलाटी और इनके बहुत सारे साथी। पहला जो गीत हमने आपके लिए प्ले किया वो दादा फिल्म से हमने आपको सुनवाया, उसके लिए एक फरमाइश हमें और मिली थी परवेज। ये हमारे श्रोता हैं मौली जागरा से। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एक गजल मोहम्मद रफी की आवाज में आपके लिए पेश करें, अमानत ये फिल्म है।

मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना अमानत फिल्म से। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम पर आपकी फरमाइश का सिलसिला जारी है। हालांकि शुरुआत में हमारा इंस्टाग्राम थोड़ा रूठा हुआ था, इस वजह से फरमाइश जो है वो ऊपर नीचे हुई है, लेकिन सिलसिला जारी है। और अब बारी है मोहम्मद रफी आशा भोसले के गाए गाने की। एक मुसाफिर एक हसीना ये फिल्म है और इसके लिए हमें जो फरमाइश मिली है ये हमारे श्रोता हैं, इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से इन्होंने फरमाइश भेजी है। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से गाना है मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना। ये रहा प्रोग्राम का अगला गाना। कुमार सानू की आवाज में ये गाना है फूल और कांटे, ये फिल्म है।

इस गाने को सुनवाने के लिए महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार। फूल और कांटे फिल्म का ये गाना है और ये कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज में।

फूल और कांटे फिल्म से अभी आपने कुमार शानू के साथ अलका याग्निक को सुना, और इससे पहले जो हमें फरमाइश मिली थी वो मिली थी उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म से। इस फिल्म का गाना हम आपके लिए प्ले करेंगे, और फरमाइश करता है हुक्मचंद, ललिता पाल, ईशांत पाल, निशांत और ईशांत पाल, दुधला मंडी अंबाला से, अंबाला कैंट से ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं। उस्तादी उस्ताद से इस फिल्म का गाना है आपके रेडियो सेट पर।

0: आशा भोसले उषा मंगेशकर को अभी आपने सुना। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में अगली फरमाइश लेकर हम आपके साथ हैं और ये फरमाइश है, हमें एक ही गाने के लिए दो फरमाइश मिली हैं और ये नाम है कृष्णा पाक दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, पंखा रोड से जनकपुरी से पेंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराय। गाना है मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म है फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मोहम्मद रफी को अभी आपने फर्ज फिल्म से सुना। आइए अब फरमाइशों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अगली फरमाइश पूरी करें, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ श्रोताओं ने केवल नाम भेजे हैं। मालवा से ये लिखने वाले हैं जगदीश, धाकड़ नायमा, रंजू भाई, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ और इनके बहुत सारे साथी। इनका गांव है हिंगड़ी मालवा से, और फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की भेजी हुई हाथी मेरे साथी। इस फिल्म का गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

money.

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में हाथी मेरे साथी फिल्म से अभी आपने एक गीत सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। ये लाइव फरमाइशी कार्यक्रम है। विविध भारती चंडीगढ़ से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 107.2 MHz पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अगला गाना है काला पत्थर, फिल्म से हमने चुना है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गाना है। लेकिन इससे पहले आज जो प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी दादा फिल्म के गाने की, यसुदास की आवाज में वो गाना था, कुछ और नाम थे

उस फरमाइश में वो भी नाम हम शामिल किए देते हैं, सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह, परवेज और इनके साथ ही मौली जागरा चंडीगढ़ से। तो काला पत्थर फिल्म के लिए जो हमें फरमाइश भेजी है वो भेजी है सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक डींगरा और इनके बहुत सारे साथी। सुनिए अपनी फरमाइश।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को अभी आपने काला पत्थर फिल्म से सुना। आप प्रोग्राम में हमने दाग फिल्म का गाना प्ले किया था लता मंगेशकर की आवाज में, उसके लिए एक और फरमाइश मिली सेक्टर 45 से चंडीगढ़ से यश कुमार वर्मा, सुषमा वर्मा, ज्योतिका वामिका और लोकेश वर्मा। और अब जो फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं वो फरमाइश है मोहम्मद रफी की आवाज में महबूब की मेहंदी, इस फिल्म का गाना है। इसके लिए हमें फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना।

मोहम्मद रफी को भी आपने महबूब की मेहंदी इस फिल्म से सुना। गाना आप आखिर में ठीक तरह से नहीं सुन पाए। खैर, अगली फरमाइश हम पूरी किए देते हैं। ये फरमाइश हमें मिली है, लिखने वाले हैं सेक्टर 21 पंचकुला से मोहम्मद अनस और मोहम्मद अरहान। मोहम्मद रफी और माफ कीजिए आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में ये गाना है किस्मत। ये फिल्म है

और प्रोग्राम के आखिर में गाना हम शामिल कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, नथाना पंजाब से। इन्होंने फरमाइश भेजी है। महेंद्र कपूर, आशा भोसले की आवाजों में गाना है। ये फिल्म है वक्त।

0: इस गाने के साथ ही आवाज का म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस प्रोग्राम समाप्त करने की अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड

0: 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 12:05 हुए हैं। अगले प्रोग्राम के लिए हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
4: चिक चिक बम बम चिक चिक

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज संज्ञा सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुना रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

तरुण किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाए तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण विविध भारती पर। इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: वफादारी का शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
1: अरे क्या
0: असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा या या या मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा।

0: दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे, सच भाई हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं।
2: अरे कैसे

0: mama, oh mama, mama, mama. Ghar wale khaye chakkar, aisa hai apna chakkar, chakkar mein tum nahi aana. Pyare mama, oh mama.
1: परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम बाटकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है, और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजनू सुल्तानपुरी की बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हो।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।
1: जब पहली बार गूंजे थे ये शब्द,
2: ये आकाशवाणी है।
1: जब देश नहीं था आजाद, रेडियो था एक चमत्कार, आवाज ही थी जुड़ाव का एक जरिया।
2: 1936 से लेकर 90 वर्ष की सुनहरी यात्रा में
1: आकाशवाणी ने न सिर्फ समाचार सुनाए बल्कि देश की नब्ज को महसूस भी किया।
2: जब देश ने आजादी की सांस ली, आकाशवाणी ने वो पल सुनाया। जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को छुआ, आकाशवाणी ने वो गर्व गुनगुनाया।
3: लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
1: जब भूकंप, बाढ़, युद्ध या महामारी आए, आकाशवाणी बना विश्वास की आवाज।
4: आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं को आपके मित्र रदा मुराद का सत्सरियाकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे ये विनती करता हूँ कि इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, इसे अपनी सुरक्षा का सबसे मजबूत तरीका समझें।
2: 90 वर्ष का सफर, अनगिनत यादें, आज भी वही विश्वास, भरोसा, वही अपनापन।
1: ये आकाशवाणी है, हर दौर, हर दिल की आवाज,
2: हमारी और आपकी पहचान। आकाशवाणी,
5: आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहेगा। शाम 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में।

आकाशवाणी दिल्ली से हम समाचार रिले करेंगे दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे शाम 5:20 पर और 5:30 बजे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग

शाम 6:30 पर अमृत वाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में दोपहर 1:30 पर आप प्रोग्राम सुनेंगे सुरीला सफर, 2 वंदे मातरम एक जय घोष, 2:30 सदाबहार नगमे, 3 महिलाओं के लिए फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली,

0: टॉक शो पिटारा में शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी प्रोग्राम में आज की कहानी है जीवन एक सरल रेखा। ये कहानी लिखी है श्वेता उपाध्याय ने। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने, रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में हास्य नाटिका बुखार, लिखा इसे वरेंद्र कश्यप ने। रात 9:30 पर आज के फनकार प्रोग्राम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। रात 10 बजे आप प्रोग्राम सुनेंगे छाया गीत। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 1:05 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। हरियाणा सरकार ने करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना तथा उसकी परियोजना प्रबंधन सलाहकार संस्था पीएमसी की अवधि को आगामी 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे चल रही परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा तथा निर्मित परिसंपत्तियों को संबंधित विभागों को सुचारू रूप से हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसी तरह फरीदाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना का भी आगामी 31 मार्च तक विस्तार किया गया है। कल चंडीगढ़ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में करनाल और फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि यह विस्तार केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप दिया गया है, ताकि पूर्णता के निकट पहुंच चुकी

लक्ष्य परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके और नागरिकों को आधुनिक शहरी आधारभूत सुविधाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर एनडीए सरकार पर आरोप लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पेपर लीक हुआ है इसका सबको दुख है, लेकिन केंद्र सरकार बिना किसी देरी के सीबीआई से जांच करवा रही है और बहुत लोग पकड़े जा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि इसके बाद पेपर लीक करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत हुई, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह भाजपा की ठीक कार्यप्रणाली पर जनता ने मोहर लगाई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन निगम में पहले भी भाजपा ने ही जीत हासिल की थी। पूर्व मुख्यमंत्री रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सांपला नगर पालिका चुनाव में

0: नोटबुक है, लेकिन केंद्र सरकार बिना किसी देरी के सीबीआई से जांच करवा रही है और बहुत लोग पकड़े जा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि इसके बाद पेपर लीक करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत हुई, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह भाजपा की ठीक कार्यप्रणाली पर जनता ने मोहर लगाई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 नगर निगमों, 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन निगम में पहले भी भाजपा ने ही जीत हासिल की थी। पूर्व मुख्यमंत्री रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सांपला नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव न लड़ने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने पहले भी कभी पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सांपला में भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को सिर्फ 34% वोट मिले हैं, जबकि 66% वोट विरोध में पड़े हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले दिनों में खंड स्तर तक संगठन बढ़ाया जाएगा। हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुओं के लिए 11वें चरण के संयुक्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में गाय और भैंसों को मुंहखुर और गलघोटू जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग हिसार के उपनिदेशक डॉ. रविन्द्र श्योराण ने बताया कि इस अभियान के तहत हिसार जिले में भी 4 वर्ष से अधिक उम्र के पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है।
1: हमारी टीमें वैक्सीनेशन पर निकल चुकी हैं। पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 5,36,000 एनिमल्स को, गायें भैंसों को हमने टीकाकरण करना है, जिसके लिए हमारे 90 जीवित है पशु अस्पताल है, उसकी 142 टीमें बनाई गई हैं। वो सभी टीमें घर घर जाके अपना वैक्सीनेशन करेंगी। अब की बार वैक्सीनेशन जो भी डाटा है उसको पोर्टल पर हमने चलाना है। जिस भी पशु को हम वैक्सीनेशन करेंगे उसका मोबाइल नंबर पे एंट्री करते ओटीपी आएगी, ओटीपी लेके हम उसका पूरा डिटेल भरेंगे। 2 बीमारियों का इकट्ठा टीकाकरण है, जो कि इंडिया में सिर्फ हरियाणा स्टेट में शुरू किया गया है और किसी स्टेट में दोनों का इकट्ठा नहीं, वो अलग अलग होता है। एक तो मुंह खुर की बीमारी है हमारी और एक गलघोंटू की बीमारी है।
0: उन्होंने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि निशुल्क टीकाकरण का लाभ उठाएं, इससे दूध कम होने या बच्चा गिरने का कोई खतरा नहीं है। सावधानी के तौर पर 7 महीने से ऊपर की गर्भवती भैंस और 6 महीने से ऊपर की गाय को टीकाकरण से बाहर रखा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.tikharrenterprises.com पर।
2: इस समय 1:15 हो चुके हैं। बारी है फिल्म संगीत की, मिलकर आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गानों का। आज क्यों ना कुछ नए दौर के गाने हैं आपके लिए प्ले करते हैं फिल्म संगीत में। सबसे पहले दीदार कौर की आवाज में ये गीत। ये फिल्म है हक।

0: दीदार कौर की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। ये फिल्म थी हक।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।
0: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। फिल्म संगीत में कुछ नए फिल्मी गाने हम शामिल कर रहे हैं आज, और अब बारी है धुरंधर दी रिवेंज इस फिल्म का गाना, खां साहिब, शाश्वत सचदेव और साथियों की आवाजों में।

साहिब और शाश्वत सचदेव की आवाजों में अभी आपने धुरंधर दी रिवेंज इस फिल्म से ये गीत सुना और आखिर में सुखविंदर सिंह की आवाज में ओ रोमियो इस फिल्म का गाना।

सुखविंदर सिंह और साथियों को अभी आपने सुना ओ रोमियो, इस फिल्म से यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई हमारे अगले प्रोग्राम के लिए सुरीला सफर।
2: मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते। एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी। उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे। सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि, वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया, और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे।

लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दोबार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहीं हमारे साथी में बहुत साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए, क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है, और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने की नानी की डांट तो नहीं पड़ी, पर उनका वो 54-58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

दंगल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे नहीं, लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे, हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़ाई या गिल्ली डंडा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली

मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे वो भी रेलगाड़ी से। उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे। सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

0: अगले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आज समय बदल गया है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के भी मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं। वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, तो वो तो जो

सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

अभिनेता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लैट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया है, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार।

इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जन जागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं,

बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण

0: দোহাজি ঠাকুর মেদিনী ভীম পরাধাতে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম।
1: वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता।

0: विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिम, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के

0: के मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
0: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
1: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
1: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा। ये हमारी सबसे

0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर की। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स परेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलुम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार है। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुरद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में

0: में ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमरीका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की ईगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। कुमार बाराबंकवे ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नाशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला की इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी की बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनेगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: ओपी नायर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह की झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वही शाम की झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, बोलो ना।

0: मोहब्बत जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। अरे अरे डॉज गाड़ी के इंजन की कसम। हम तो जानी प्यार करेगा प्यार करेगा।
1: अरे अरे अरे अरे अरे दीवाने अबे मरेगा
0: नहीं डरेगा नहीं डरेगा। हम तो जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा।

0: रुक सब तो रुको हमको, रुक सब तो रुको हमको, हम तो नैना चार करेगा,
1: नहीं
0: डरेगा हम तो जानी, प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जानी, हम तो जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हम।

0: नहीं धंधा,
1: जान की तेरी खैर नहीं है।
0: अबे भाग जल्दी,
1: जान की तेरी खैर नहीं है। अगर तू तकरार करेगा,
2: नहीं डरेगा नहीं डरेगा, हमको जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा, हमको जानी प्यार करेगा।

0: मानो हमको, मानो या न मानो हमको, तुम्हें गल का हार करेगा
1: नहीं डरेगा,
0: नहीं डरेगा हमको जानी, प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हमको जानी, हमको जानी प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा हमको जानी। हाय हाय हाय हाय।

तुरी तुरी।

कैसी प्यारी प्यारी लगन लगा दी, कलकत्ता तुमसे आखड़ा और बम्बई हो जाता।

राजा मेहदी खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना? अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।

0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपको कॉल लगा है?
1: जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रहती हूँ छत्तीसगढ़ से हूँ, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पर मैं बिल्लेट से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पुआ, बीस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो तीन अगस्त बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पुआ और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं। और कोई छोटा सा भी पर्व हो, उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, फैमिली तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी, नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल। मैं भी बहुत निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा सब बड़ा हो गया, जैसे बड़ा हो गया, इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है, और जुनैद अमान और विजय अरोड़ा को सुनाया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा
0: जी। विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
2: जी मेरा नाम वर्षा भगत है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
1: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
2: बिल्कुल सही पहचान आपने, मायके आई हुई हूँ।
1: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
2: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शो होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
2: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
1: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
2: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है। ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
1: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
2: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंचे, एम आई राइट?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
2: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं।
1: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
2: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये परदा है का तू जरा मुखड़ा दिखा दो, ये परदा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो।

खूबसूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक खूबसूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली,

0: को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले ने कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले ने कोई गैर नहीं।
1: कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं एक अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़
0: से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती है।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, लगन संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी।
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उनके आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सच में, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी, बहुत।
0: और विविध भारती सुनती है आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते अच्छा खाना बनाए बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सच में जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने को तो अच्छे से आपने थकान जाती अच्छा बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती है आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश
1: सुनते रहता रेडियो, दिन भर
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं एक अंतराल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कौन व हवन सामग्री।
1: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: क्या नाम है आपका?
2: राजबाई। राजबाई धाकड़।
1: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
2: बड़े गांव से।
1: बड़े गांव?
2: हाँ, गुना जिले।
1: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
2: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
1: क्या बात,
2: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
1: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
2: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
1: क्या बात है, सच में जाने परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
2: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती है कि नहीं आप?
2: हाँ, रेडियो सुनते हैं।
1: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
2: बहुत अच्छे लगे हैं।
1: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
1: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपकी बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी लीला भोले
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम संभाली।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि ये लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप? कभी खुद की खुशी का काम करती है आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है

0: कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चों का करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है,
1: खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन गाना
0: है? हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद साटी से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउस वाइफ है, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में।

0: हैं आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं, रेडियो का साथ जुड़े रहते हैं।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हम चाहे सिलाई भी करते हैं।
1: क्या बात है, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
0: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई करते हैं।
1: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं, हाँ। अपने हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी?
1: और आपने पसंद
0: से छटपटा कम दो महीना पूरा होगा।
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम
0: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रताप गढ़ है, पास तला है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती है जिंदगी में?
1: दीदी मैम तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी में एक आज आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 हुआ।

0: 57 मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इस वास्ते में 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
1: क्या बात,
0: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
1: जी।
0: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन,
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या बात,
0: काम मेरा चल जाता है और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है
1: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
0: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लामा पड़े।

ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखी, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867028 2867028 2867028।

और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आठों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही मिल बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगे का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तो गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात है। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका है। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती है, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने

इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकंत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकंत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत है तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आई जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती है, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे, जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज पर आचार्या भी प्रसन्न थी, यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम के घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिटोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थी। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल

आया जा सकता है। एक किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं ही सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हो, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का, यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना, खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यही रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे, संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा भुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे बिजली सताती है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर, उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूरी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकंठ नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो।

सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी है, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत तब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन बहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेले जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसे चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देख

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठू। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन

वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पोंछ रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरणों से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मेरे पास जाने की उड़ान नौकरी, इस पर इंडिया में जाने की, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हुए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने की

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: छाया गीत

0: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक A. अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का

0: अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। गुप्त फिल्म का गीत आपको सुनाने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति, हेमा सरदेसाई और चेतन की आवाजों में। संगीत विजू शाह का।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: अक्सर फिल्म का गीत सुनिए हिमेश रेशमिया की आवाज में.

दोस्तों अभी आपने सुना हुतुतु फिल्म का गीत हरिहरन और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

0: हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न है प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। इंटरनेट 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज न इसके साथ महान अवसर लाए। इसके बाद मानव जाति में बहुत सारे बदलाव हुए। इंटरनेट के बारे में बात करते हुए और अब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ पेश किया गया है। किसी के साथ संपर्क में रहना अब मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया प्रावधान जैसे स्टेटस अपडेट हमें पूरे शब्दों को एक महत्वपूर्ण विषय या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में व्यक्त करने की अनुमति देती है। कनेक्शन केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिक लोगों से संपर्क करना और जानने के लिए भी बहुत आसान है। इंटरनेट मानव जाति के लिए वरदान रहा है, लेकिन विज्ञान द्वारा हमें दिए गए हर दूसरे आविष्कार के रूप में इसमें कभी ड्रॉबैक्स का भी हिस्सा है। कुछ भी ज्यादा होना अच्छा नहीं है, हालांकि ये फायदेमंद हो सकता है। यही सोशल मीडिया साइट्स के साथ समस्या है। इसने दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दी, जिससे दूरी के बावजूद लोगों के बीच बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन हुआ। ये हमें अन्य संस्कृतियों के करीब लाया। हमने उनके बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन इसने एक नई समस्या को जन्म दिया जो सोशल मीडिया के लिए एक लत है। सोशल मीडिया के आदि होने वाले लोगों के पीछे मुख्य कारण जटिल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर निर्भर करता है। हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो महसूस करने वाले अच्छे रसायन निकलते हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। ये हमें स्वीकृति की भावना देती है, क्योंकि ऐसे लोग इसे विशेष क्षण पर्टिकुलर मोमेंट की खुशी या इस पर निर्भर करते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। वो जो आत्मविश्वास नहीं रखता है या लगातार दूसरों के बारे में सोचता है कि और उसके बारे में क्या सोचता है, ऐसे लोग सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें किसी के सामने बात किए बिना बोलने या व्यक्त करने का मौका देता है। सोशल मीडिया लत आजकल एक लोकप्रिय और अनूठी घटना है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों का निदान किया जा सकता है जो मैं अब लम्हे प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सोशल मीडिया का अनुभव करते समय उत्साहित महसूस करना, उस भावना में इतनी गड़बड़ी यानी इंग्रोस्ड होने के कारण व्यक्ति उस समय चेतना कॉन्शियस को खो देता है। सोशल मीडिया लत के कुछ शारीरिक लक्षण है दोस्तों, धुंधली दृष्टि यानी ब्लर्ड विजन है, उचित नींद नहीं लेना और सिर दर्द का अनुभव। सोशल मीडिया से कनेक्ट होने या पहुंचने योग्य नहीं होने पर चिंतित महसूस करना। प्रतिदिन गतिविधि के बारे में अपडेट करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता, इसे कंपल्सिव नीड कहते हैं। ऐसे लोग जब भी लोगों के समूह के साथ होते हैं तो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। बलपूर्वक सोशल मीडिया से कटौती करते समय क्रोध करना। आजकल समस्याएं बहुत खराब हो रही है, क्योंकि किशोरावस्था में यानी टीनेजर सोशल मीडिया के लिए अधिक से अधिक आदि हो रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सुलभ हो गया है। इस लत का निदान करना और इसका इलाज करना सबसे अच्छा तरीका साइकियाट्रिस्ट से परामर्श करना होगा, और कुछ सेशंस व्यक्ति को व्यसन से निपटने में मदद करेगा। ये व्यक्ति के व्यवहार को काफी हद तक बदल देते हैं और अचानक पहुंच को रोकने से महत्वपूर्ण वापसी यानी क्रिटिकल विथड्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। सोशल मीडिया लत के लिए उपचार अल्कोहल के एडिक्शन समान ही बनाए गए हैं। इसमें भी विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत खतरनाक है। द पर्सन हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, इसीलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। लक्षण बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की लत एक व्यक्ति के व्यवहार को बाधित कर सकते हैं। तो यह बेहतर है अगर हम इसे रोक सकते हैं और केवल हमारे जीवन के मूल में वृद्धि कर सकते हैं। इसे रोकने के कुछ तरीके में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय होगा। कुछ हॉबीज डेवलप कीजिए, जो आपके खाली समय में पढ़ना, गार्डनिंग करना, पहेलियों का सुलझाना आदि में व्यस्त रखें। आप उस समय अपने दोस्तों से बात करना और कुछ नया सीखने में भी व्यतीत कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने खाली समय में परियोजनाएं बनाना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कुछ कविताएं, गीत भी लिखते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ करें जो आपके बोरियत को दूर करे और आपको सोशल मीडिया तक अट्रैक्ट न करे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हाल ही में किए गए अध्ययन से ये सुझाव दिया गया है कि उनमें से हृदय गति यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट या असामान्य रक्तचाप यानी इंक्रीज्ड और अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर का अनुभव हो सकता है। इस विशिष्ट लत में वापसी के लक्षण यानी विथड्रॉल सिम्टम्स आमतौर पर गैर जीवन खतरनाक यानी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और नशे की लत चिंता स्तर एंग्जाइटी लेवल में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, हार्मोन लेवल में असंतुलन की ओर ले जाती है, जबकि अंतिम लक्षण एक कम प्रतिरक्षक प्रणाली यानी डिमिनिशिंग इम्यूनिटी सिस्टम है, कुछ सामान्य रूप से मनाए गए लक्षण है। आसानी से परेशान होना, अकेला रहना, उदास, बेचैनी महसूस होना, समूह गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा या भाग नहीं लेना। डियर फ्रेंड्स, पता चला होगा कि कितना खतरनाक है ये सोशल मीडिया एडिक्शन। स्मोकिंग अल्कोहल जितना खतरनाक हो सकती है, सोशल मीडिया भी उतना ही खतरनाक है और कभी कभी उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया तो आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, आज हमारे बच्चों के हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। With this very useful and thought-provoking information about social media addiction, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत। नमस्कार, राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में

0: भी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
0: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
0: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
0: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
0: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
0: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी था

0: मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना।

0: चाहिए, लग जाओ काम पे।
1: जी सुबेदार साहब।
0: हम 29 लोग हैं तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
1: सत श्री अकाल।
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
3: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
4: साहब

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई

0: विदेशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउथ वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
2: FM 107.2 ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਸੁਣੀਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇੰਸਟਾਫੇਸ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਆਪਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हैं विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, बीबीएमबी कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR

0: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, बीबीएमबी कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की और हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा,
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि परीक्षा के लिए फिर से कोई फीस नहीं ली जाएगी और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। पेपर लीक मामले की CBI जांच को लेकर उन्होंने कहा,
2: CBI तहत तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर, सरकार की पूरा नेतृत्व सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए, सिर से तो नेतृत्व उसके लिए खुद दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है, हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, राजस्थान व पंजाब के सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव पंजाब व अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिमा बराड़ व मनोज त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा,
3: जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में। आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया, तो बहुत अच्छे प्रकार से जो हमारे ये इंजीनियर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, इस सारे प्रोजेक्ट के प्रबंधन की सराहना भी की।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें बोर्ड से परामर्श करके पूरा किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें बीबीएमबी कर्मचारियों की मांगें मिली हैं, उन पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। अभी सिर्फ कैशलेस इलाज की घोषणा की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग का संदेश भी दिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल चंडीगढ़ में वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। यह वॉकेथॉन सुबह 6 बजे सुखना लेक पर आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में मई माह में देशभर के केंद्रों में वॉकेथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आकाशवाणी की बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। आज तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए सिरसा से विशेष रेलगाड़ी सिख श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह विशेष रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
4: आज इस धरती पे सचखंड नांदेड़ साहब की

0: ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਲਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
1: जिला प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार की इस प्रयास के लिए प्रशंसा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के मतदाताओं की अंतिम सूची इस वर्ष 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। तीसरे चरण के तहत SIR देशभर के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने कहा कि 614 बूथ स्तरीय अधिकारी 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर शहर के 5,18,000 और 663 मतदाताओं का विवरण इकट्ठा करना शुरू करेंगे।
2: पहला जो चरण है इसमें वो है हमारा ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का, और ये जो प्रिंटिंग का जो कार्य है ये हमारा 5 जून से लेकर 14 जून तक ये कार्य होना है। उसके बाद एक हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन होनी है बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स, और ये एक महीने का समय है, 15/6 से लगभग 14 जुलाई तक का। उसके बाद क्योंकि हमारे को इसके हिसाब से पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करना है ताकि हर पोलिंग स्टेशन पर 1200 से अधिक मतदाता ना हो, उससे कमी हो या अप टू 1200 मतदाता ही हो पोलिंग स्टेशन वाइज। उसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है जो कि 21/7 को की जाएगी। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लगभग 1 माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को फाइनल पब्लिकेशन की जाएगी।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR के माध्यम से पात्र और अपात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी।
2: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो, और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज है वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र है उनको उसमें लाना है।
1: हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रदर्शन एनीमिया को कम करने के प्रति राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 86.5 के AMB इंडेक्स के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा 5वें स्थान पर था, जिससे इस वर्ष की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि बहुआयामी रणनीति का परिणाम है। AMB स्कोर कार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 2 सप्ताह से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी कल काम पर लौट आए। ये कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर थे। इसी के साथ अग्निशमन विभाग के हड़ताली कर्मचारी भी काम पर लौट आए हैं। प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, BBMB कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहला जो चरण है इसके वो है हमारा ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का। और ये जो प्रिंटिंग का जो कार्य है ये हमारा 5 जून से लेके 14 जून तक ये कार्य होना है। उसके बाद एक हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन होनी है बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स, और ये 1 महीने का समय है, 15/6 से लगभग 14 जुलाई तक का। उसके बाद क्योंकि हमारे को इसके हिसाब से पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करना है ताकि हर पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो, उससे कमी हो या अप टू 1200 मतदाता ही हो पोलिंग स्टेशन वाइज। उसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है जो कि 21/7 को की जाएगी। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लगभग 1 माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल की जाएगी। तो लगभग ये जो समय है जो जून से लेकर सितंबर 22 तक का ये समय है।
1: मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि SIR योग अते अयोग वोटरों का भी पता लगाएगी।
0: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज है वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र है उनको उसमें लाना है।
1: इस दौरान श्रीमती पुरी वालों राजनीतिक पार्टियां विशेष तीव्र सौदे प्रोग्राम बारे जानकारी देने लिए एक मीटिंग भी की गई जिस विच राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां ने नुमाइंदा ने शिरकत की थी। उन्होंने दसा कि चंडीगढ़ में आखिरी तीव्र सोध 2002 की गई सी। तेजी नाल शहरीकरण, निरंतर प्रवास, 18 साल की उम्र प्राप्त करने वाले नौजवान नागरिकां अते वोट पाउण दे योग बनन, मौत बारे जानकारी प्राप्त करने विच देरी ते वोटर सूची विच गैर कानूनी विदेशी नागरिकां दे नाम शामिल करन दे मद्देनजर एक तीव्र सोध एक गलती मुक्त अते भरोसेयोग वोटर सूची तैयार करन लई बेहद जरूरी हो गई है। SIR दी योग्यता 1 जुलाई 2026 है। संगरूर की गौशाला के नवीनीकरण में 50 लाख रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट का आशनी पत्थर रखा गया। विधायक नरेंद्र कौर पराश ने कहा कि गौधन की सुचजी संभाल के उद्देश्य यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि गौशाला ओबावाल सड़क के नवीनीकरण गौधन की देखभाल में बड़ी राहत मिलेगी। यह यकीनी बनाया जा रहा है कि हंगामी हालात में इलाज संबंधी सेवाएं भी तेजी से मुहैया हो सकन। गुरदासपुर पुलिस ने डकैती की योजना में नाकाम करदे 6 मुलजमान एक पिस्तौल, मैगजीन, 4 राउंड हथियार समेत काबू किया। इस बारे वीरवे संजय करते हैं। गुरदासपुर के सीनियर पुलिस कप्तान आदित्य ने कहा
2: इन्फॉर्मेशन आई सी कि भी कुछ बंदे बीमा नगर के एरिया दे विच हैगे जो किसी वारदात करने की शिकायत चाहेगी। इमीडिएटली साड़ी टीम वालों उन्हें पोस्ट विच रिएक्ट किया गया एंड एक असी गड्डी फड़ी और असी 6 बंदे फड़े इन्हां ते परचा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। असी जी है इनिशियल जी पूछगिछ है वो इन्हों तो कर रहे हैं एंड इन्हों का स्पेसिफिक की टारगेट से सारी चीजा असी जरा है कॉम्प्रीहेंसिवली जो है वो केस के असी इन्वेस्टिगेट करा।
1: उधर पठानकोट पुलिस ने चोरी हुए तो गुम हुए करीब 120 मोबाइल फोन बरामद करके उन्होंने असल मालिकों को सौंपा। पठानकोट के SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि जनतक शिकायतों के आधार पर निरंतर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने मोबाइल फोन में ट्रेस किया गया तो उन्होंने मालिकों को दिए गए हैं। मानसा के जिला प्रबंधकी कॉम्पलैक्स विखे भूचाल वर्गी कुदरती आफत नाल निजिठण लई अज एक विशेष मॉकड्रिल करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर की अगुवाई हेठ हुई इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भूचाल आने की सूरत में जानी माली नुकसान को घट तो घट करने लई प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करनी सी। मौसम विभाग ने अज पंजाब ते हरियाणा में कुछ थावां ते गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश ते तेज हवावां वगण की पेशगी की है। इसे नाल 17 ते 21 मई तक इन्हां दोनों सूबों च कई थावां ते भारी गर्मी पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान पंजाब च 41 डिग्री सैल्सियस तापमान नाल अज पठानकोट सब तो गर्म शहर है जबकि हरियाणा च वध तो वध तापमान 4.9 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स नाल होगा। आखिर च खास खबरें एक बार फिर तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वालों नीट UG 2026 की मुड़ परीक्षा 21 जून में करवाने का ऐलान। हलवारा हवाई अड्डे से एयर इंडिया की पहली उड़ान लाइन में पंजाब का लुधियाना भारत के सनती हवाबाजी नेटवर्क नाल जुड़िया। जम्मू कमीशन वालों केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ च विशेष तीव्र सोध 15 जून तो अभी मौसम विभाग ने पंजाब के हरियाणा में कुछ थावां पर गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश ते तेज हवावां की पेशगी की। इस दिन लई प्रदेशक खबरें खत्म हुई। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसीं सुनोगे 7:30 बजे। नमस्कार।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसीं सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। अमृत बाणी दे तहत सरवण करदे आं कुछ शब्द। भाई तरलोचन सिंह जी की आवाज़ विच सरवण करदे आं ये शब्द।

0: अमृत पानी देता है थोड़ी तुसी सरवन कर रहे सी कुछ शपथ।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको, तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो

0: जानते नहीं उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
0: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।

0: लक्ष्य फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीत था।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती को

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

तीसरी मंजिल फिल्म का नाम है मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। आडी वर्मन का संगीत मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम।

कास्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: ये नाक बंद करके एकदम भेजा दो।
1: अरे दवा तो कड़वी हो ही है, तू क्या जाने तेरी बीमारी से हम कितने परेशान हैं।
0: हाँ माँ।
1: ले बेटा सड़ाक से पी जा, शाबाश पी जा पी जा।
2: ओहो माँ, तुम लोग मुझे घर में रहने दोगे भी या नहीं? मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे ना कभी बुखार था, ना है और ना ही कभी भविष्य में होगा। मेरे भी पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो।
1: सो तो मैं भी कहूँ बेटा कि बुखार है तेरे दुश्मनों को।
2: हाँ।
1: पर तू ये काढ़ा तो पी ले मेरे बच्चे, देखियो एक ही खुराक में बुखार आधा रह जाएगा। अरे हर शरण वैद्य जी से दवा लाए हूँ तेरे लिए, कोई अरे गहरे नत्थू खरे की दवा थोड़ी। ले बेटा पी जा।
2: और चाहे इस दवा को स्वर्गीय धनवंतरी जी ने खुद ही तैयार क्यों ना किया हो माँ, मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। इतनी कड़वी जहर दवा को भला कोई शरीफ आदमी पी सकता है? तुम जरा चक्कर देखो एक बूंद, जिस्म का एक एक रुआ फलाना हो जाए तो मेरा नाम अशोक नहीं।
1: हाय हाय, बिल्कुल वकीलों की तरह बहस करे तू तो। भगवान मेरे बच्चे को 100 बरस की उम्र देवे, कलेक्टर बनाए इसे। ले बेटा अब तो पी ले इसे, है ही कितना, अरे मुश्किल से मासा दो मासा होगा।
2: तुम भी कमाल करती हो माँ, पूरे पाव भर का ग्लास भरा हुआ इस कावे से, और तुम और फिर चाहे ये रत्ती भरी क्यों ना हो, मेरे बस का नहीं है ऐसे पीना।
1: अरे मेरी नहीं तो अपने बाबूजी की परेशानी का तो ख्याल कर। अरे देखो 3 दिन से डॉक्टर दादों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी तो बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान
2: है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ? अरे भाई मुझे लेटाया गया है बिस्तर पर जबरदस्ती। हे भगवान, कैसी बुरी घड़ी में मैंने थर्मामीटर मुंह में लगवाया था।
3: इसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। अशोक की माँ, भाई जी मैं कहता हूँ तुम रोगी से बहस करती क्यों?
2: बाबूजी आप माँ से कुछ भी कहिए लेकिन मुझे रोगी ना कहिए।
3: वाह बरखुरदार वाह, तुम भी अपनी कसम की एक ही हो, 72 घंटों से चारपाई पकड़ी हुई है
2: और मैं इस वक्त सैकड़ों दंड पेल सकता हूँ, हजारों ठक बैठक लगा सकता हूँ, जिमनास्टिक कर सकता हूँ, 1 मिनट तक दौड़ सकता हूँ और एक सांड से कुश्ती लड़कर उसे पछाड़ भी सकता हूँ,
3: लेकिन 3 दिन होगा एक प्याला काढ़ा भी ना पी सके।
1: हाय हाय, वो बेचारा अभी अभी पीने ही लगा था कि तुमने उसे फिर छेड़ दिया। ले अशोक नाक बंद कर बेटे।
2: मैं कहता हूँ इस काढ़े को पीने से मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। बाबूजी आखिर आप लोग मेरे माँ बाप होकर भी क्यों नहीं समझते?
3: देखो अशोक, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। भाई मुझे तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपने इकलौते बच्चे को बीमार देखकर माँ बाप के दिल पर क्या बीत।
2: जी
3: भाई दीजिए, हम मानते हैं कि दवा कड़वी है लेकिन कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं होती जो पीना जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अचानक ही हमारी कनपट्टी पर बैठ गए फुंसी पैदा हो गई।
1: अब बेटा तेरे बाबूजी ने फुंसी की कोई चिंता न करके 1 महीने तक रोज नीम के पत्तों का आधा से रस पिया था, जिससे खून में कोई विकार न रहे।
3: जी और बेटे हमारे इस काम से हमारी सेहत सुधर गई, साथ ही साथ घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे। भाई जी अशोक तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई उपदेश दे रहे हैं।
2: नहीं नहीं
3: भाई, तुम तो हमारे समझदार बेटे हो। अशोक की माँ
1: जी,
3: गिलास तुम अशोक के हाथ में दे दो।
1: अच्छा।
3: वो खुद पिएगा काढ़ा। भाई हाँ तो बेटा देखो, हम आंखें बंद कर लेते हैं और तुम पी जाओ, हम 1 2 3 कहते हैं, 1 2 3 पी जाओ बेटा पी जाओ। हाँ हाँ एक सांस में पी जाओ। हाँ मैं कहता हूँ पी जाओ।
1: हाय हाय, तुम तो बुरी तरह डांटने लगे बच्चे को।
2: देखो
1: पहले चेहरे का पसीना तो सुखाओ।
3: मैं कहता हूँ अशोक की माँ,
1: कहते हो तो कहते रहो, 3 दिन से बराबर बुखार है उसे, कमजोरी बढ़ गई है, आखिर एक सांस में कैसे पी जाएगा इतना सारा काढ़ा। ले बेटे बेटे अशोक।
2: मैं एक सांस में 2 सिर दूध पी सकता हूँ, 5 कच्चे अमरूद खा सकता हूँ, 2 दर्जन केले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि कौवे करेले खा सकता हूँ, पर एक प्याला काढ़ा नहीं पी सकता।
3: बाबूजी ये नीम के पत्तों से कहीं ज्यादा कड़वा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें काढ़ा पिलाकर ही दम लेंगे। भगवान
1: बेटा ये काढ़ा मैं 15 दिन तक पी चुकी हूँ, अरे मुझे भी तेरी तरह 100 बुखार था।
3: ना कमबख्त बढ़ने का नाम लेता था ना घटने का। 5 दिन बाद तुम्हारी माँ को जब ये काढ़ा दिया गया
1: तो कहीं जाके मेरा बुखार उतरा। हाय वैद्य जी, भगवानों ने 100 बरस की उम्र
3: क्या बच्ची होगी, वैद्य जी पहले 102 साल के हैं। अच्छा तो हाँ अशोक की माँ, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, तुम बिजली की तेजी से अशोक के मुंह में काढ़ा डाल देना।
1: नहीं जी, हाथ मैं पकड़ती हूँ।
3: तुम्हारा बेटा 25 साल का नौजवान है अशोक की माँ, एक झटके में ये दोनों हाथ छुड़ा ले।
2: आप लोग चिंता ना करें, मैं चुपचाप लेटा रहूंगा
3: और फिर तुम घंटों तक मुंह नहीं खोलोगे।
2: बाबूजी आप मुझे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखला देते? ना हो तो वैद्य जी से कहिए वो आकर मुझे

0: एक तो ले, पता नहीं उन्होंने मेरी नब्ज देखे बगैर कैसे काड़ा दे दिया।
1: बेटे तुम्हारी जिद को देखते हुए भाई जी मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा
0: जी।
1: बस वो आते ही होंगे 5-7 मिनट में, लेकिन उनके आने से पहले हम तुम्हें शक्सीर दवा की एक खुराक जरूर पिलाना चाहते हैं।
0: नहीं
1: हाँ अशोक की माँ
2: जी।
1: अच्छा तो देखो हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और तुम
2: चलो मैं दवा उन्हें लूंगी।
0: प्रभु
2: जरा एक सेकंड के लिए ये गिलास तो पकड़ना अशोक के बाबू।
1: लाओ दे दो। है मुझे तो तुम्हारा हाथ भी कुछ गर्म महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें तो
2: क्या भक्ते हो जाओ।
0: अच्छे
2: अरे अभी अभी तो मैं कढ़ी चावल खा के उठी हूँ और सुबह से अब तक कसाले का काम करती रही हूँ। मुझे भला कहीं बुखार हो सकता है?
1: बातों का बुखार से क्या ताल्लुक है? तुम फौरन थर्मामीटर लगाओ।
2: कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है अशोक के बापू? अरे मुझे फिर भूख लग रही है और बल्कि मुझे तो अभी रामू की माँ के घर भी जाना है।
0: दीदी थर्मामीटर लगाने में क्या फर्ज है माँ? बुखार ना हो तो ना सही, बाबूजी की शंका तो दूर हो जाएगी। ये लो थर्मामीटर।
2: ओफो
1: देखो बेटे तुमने जरा अपनी माँ की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो तुम्हें भी टेंशन हो गई, यानी तुम्हारी भी चिंता बढ़ गई।
0: चिंता की तो बात है ही बाबूजी।
1: यही हाल हमारा भी है अशोक बेटा, तुम्हारे लिए हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत चिंतित हैं।
0: आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं गलत था।
1: अच्छा तो बच्चे अब तुम चुपचाप काढ़ा पी लो।
0: पी तो लूंगा बाबूजी, पर आपको एक कष्ट दूंगा।
1: हाँ हाँ बेटे जरूर कहो कहो।
0: बाबूजी मैं सीधा लेटा रहूंगा और किसी ना किसी तरह मुंह भी खोल लूंगा, बस आप तो एकदम खुराक मेरे गले में पहुंचा।
1: शाबाश बेटा शाबाश। एक सेकंड ठहरो।
0: क्यों?
1: मैं जरा थर्मामीटर देख लूंगा।
0: हाँ जी
1: लाना जी, जरा देना इधर थर्मामीटर।
2: ये लो।
1: देखा मैं पहले का क्या था? अशोक की माँ तुम्हें भी बुखार है 100 डिग्री। ठीक अशोक
0: क्या मालूम बाबू जी माँ को भी 2-3 दिन से बुखार रहा हो।
1: हो सकता है,
0: हो सकता है।
2: मैं कहती हूँ
1: तुम्हें अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें लेटने की जरूरत।
0: हाँ माँ।
1: संतो ओ संतो, अबे संतो कहाँ मर गया तू? कहाँ चले गए थे तुम?
3: डाकघर गया था बाबू जी, अशोक बाबू ने 3 पोस्टकार्ड और 5।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इस चारपाई पर एक बिछौना अशोक की माताजी के लिए लगा दो।
2: अच्छा।
1: बुखार है और ये थर्मामीटर धोला।
2: क्या मुसीबत है
0: बाबू जी, अब इस कावे की 2 खुराक बना लीजिए, एक खुराक माँ को भी तो चाहिए।
1: तुम ठीक कहते हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो। बाकी ये लो अशोक की माँ, पहले तुम पी जाओ दवा,
0: जल्दी
1: तुम्हें देखकर अशोक की हिम्मत भी खुल जाएगी।
2: मैं नहीं पीऊंगी ये कड़वा काढ़ा, मेरा जी पहले से निकला रहा।
1: वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है?
3: बिस्तर तैयार है बाबूजी, और ये लीजिए थर्मामीटर।
1: अशोक की माँ तुम तो पहले भी इस काढ़े को 15 दिन पी चुकी हो।
0: हाँ
1: तुम पी लो, उधर तुम्हारा बुखार उतरा, इधर मेरी और अशोक की टेंशन यानी चिंता एकदम दूर हो रहा
2: है। अजीब नाली में फेंकिए इस काढ़े को, भाग में बुखार होगा तो होके ही रहेगा। वैजी का काढ़ा तकदीर के लिखे को थोड़ा ही बदल सकता है।
1: देखो अशोक की माँ, अब तुम्हें भी जबरदस्ती पिलाया जाएगा काढ़ा। दवा के मामले में मरीज की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
0: गुस्सा ना कीजिए बाबूजी, लाइए पहले मुझे पिला दीजिए दवा, माँ अपने आप पी लेंगी बाद में।
1: जियो बेटा जुग जुग जियो। अच्छा तो तुम सीधे लेट जाओ, मैं तुम्हारा मुंह खोलकर अपने आप दवा डालूंगी।
0: जी
1: हाँ इस तरह बस बस, अब हिलो डुलो मत।
0: जी
1: हाँ हाँ हाँ, मुंह खोलो खोलो मुंह खोलो।
0: और ठहरिए बाबूजी,
1: क्या बात है बेटे?
0: बाबूजी मुझे आपका हाथ भी गर्म लगता है, कहीं आपको तो?
1: अरे पगले धूप में चल फिर कर आया हूँ ना, कोई बर्फ खाने में तो बैठा नहीं था। और फिर मेरे चेहरे की सुर्खी क्यों नहीं देखते तुम?
2: सुर्खी बुखार से भी बढ़ जाती है कभी कभी अशोक के बाबू, थर्मामीटर तो पास में पड़ा है, लगा के क्यों नहीं देख लेते?
0: ये लीजिए बाबूजी थर्मामीटर, भगवान करे आपको बुखार हो।
2: बेटा अशोक, बैजी मुझे बता रहे थे कि आजकल भूत के बुखार बहुत फैल रहे हैं।
0: भूत नहीं वैद्य, छूत की बीमारियों का जिक्र कर रहे होंगे।
2: बुखार भी तो बीमारी ही होती है बेटा।
0: तब तो ये कावा पीना ही होगा माँ तुम्हें।
2: अरे मेरी जिंदगी का क्या है बेटा, जिंदगी तो तुम लोगों की चाहिए।
0: लाइए बाबूजी मुझे दीजिए थर्मामीटर। अरे आपको भी बुखार है 100 डिग्री, मेरी और माँ की तरह।
2: सच? संतोष
0: संतोष
2: संतोष, अरे इस पलंग पर एक बिस्तर और बिछा दे,
0: एक और,
2: और एक खाली प्याला भी लेके आना।
0: जल्दी
3: जी अशोक।
2: हाँ अशोक।
0: हाँ जी माँ।
2: आप इस दवा के 3 हिस्से कर दे।
0: जी अभी करता हूँ।
2: एक खुराक तेरे

0: बाबूजी कहेंगे।
1: भाई आज मेरे बुखार का पहला दिन है, आज मेरा दादा पीला ठीक नहीं।
2: आज जाने बाबूजी, आपको भी मेरी और माँ की तरह कल परसों से बुखार हो।
3: बिस्तर लगा दिया है बाबूजी।
0: अच्छा,
3: ये लीजिए प्याले।
0: अशोक बेटा, सबसे पहले अपने बाबूजी को खुराक दे।
2: सबसे पहले।
0: अरे इनके ही दम से तो गृहस्थी चलती है।
1: मैं आज बुखार के पहले दिन दवा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये मेरा उसूल।
0: लेकिन नीम के पत्तों का रस तो तुमने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारी कनपटी पर फूल
1: है। लेकिन ये काढ़ा है।
4: नमस्कार कृपा शंकर जी।
1: आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपकी सब जरूरत थी। देखिए मुझे और अशोक की माँ को भी सौ बुखार हो गया है, और अशोक के बारे में तो मैंने आपको टेलीफोन पर बता ही दिया था।
2: लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे भूख बहुत लगती है, दौड़ने भागने को जी करता है, और बिस्तर सबसे बुरा लगता है।
4: लाइए नब्ज दिखाइए।
0: डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले कढ़ी चावल खाए थे, अब फिर भूख लग रही है, बदन में फुर्ती महसूस कर रही हूँ।
4: आप भी नब्ज दिखाइए।
1: मैं बिल्कुल चंगा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए फिर भी मुझे सौ बुखार है।
4: आप भी लाइए।

0: दौड़ने भागने को जी करता है और बिस्तर सबसे बुरा लगता है।
1: लाइए नब्ज दिखाइए।
2: डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले कढ़ी चावल खाए थे, अब फिर भूख लग रही है, बदन में फुर्ती महसूस कर रही हूँ।
1: आप भी नब्ज दिखाइए।
3: मैं बिल्कुल चंगा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए फिर भी मुझे 100 बुखार है।
1: आप भी लाइए अपनी नब्ज।
2: क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश हैं।
1: कोई खास बात नहीं कृपा शंकर जी, मैं सोच रहा हूं मैं यहां बेकार ही आया, आपका थर्मामीटर गलत है। जी हाँ, इसको लाख बार झटकिए लेकिन इसका पारा ना तो 100 डिग्री से आगे बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है।

अभी आपने वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका सुनी। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूली बिसरी गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम चित्रलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म बर्फी से ये गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में प्रीतम ने संगीत दिया, सईद कादरी ने इसे लिखा।

राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आ जाए नचले फिल्म का नाम है। जयदीप साहनी ने इसे लिखा और सलीम सुलेमान का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: सिंबा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे और चित्रलोक के बाकी मन में इस अंतराल के बाद।
1: अरे रोहित कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
2: वो मुझे कुछ काम है।
1: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
2: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी
0: चित्रलोक कार्यक्रम में इन अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिल्म ब्रदर्स से ये गीत, सोनू निगम, नीति मोहन की आवाजें। आज अतुल का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। 8:45 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
4: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
6: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन

0: नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29

0: जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
3: ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸਾ ਦੇਖਾ ਹੈ।
4: ਜਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ
3: ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ

0: अरे कहाँ जा रहे हो, रुको जरा।
1: वो मुझे कुछ काम है।
0: अरे रुको तो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम और ऑफिस के बाकी लोग मुझसे दूरी बना रहे हो, कोई बात है क्या?
1: बात तो है ही, तुम उस राहुल के साथ जो रहते हो जानते नहीं, उसे HIV है।
0: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
1: क्या नहीं जानता?
0: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: सच में?
0: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
2: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।
3: ये रातें, ये मौसम।

0: लता मंगेशकर मनाडे की आवाजों में गीत चोरी चोरी फिल्म से आपने सुना, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यही समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, मैं लिखता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह धोना है, काम काज को, जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल धूल शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि हमें हमको तो जरा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब रांची प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी हो।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्यु दंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अंडा।
1: साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: भाई शाम रोक ले, रोक ले, रोक ले। भाई शाम रोक ले।

फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, चुन चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यह कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धार

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
2: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। हा, हा, हा।

0: है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। ये उस रात की बात है जब शोक हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें। कुछ देर ठहरी, अपनी झोंकों में फूल की खुशबू समेट आगे चल दी, लेकिन फूल के

0: खिलखिलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई, जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।
1: हम से

हवा की छेड़छाड़ थी या खुशबू का असर, खोया खोया वो जर्रा अचानक बेचैन हो गया और पूछने लगा।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुरीली भड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। कुछ एहसास इतने खास होते हैं कि साथ ना होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुशबू के झोंके से जरा तो महक गया, जो कहना चाहता था वो हवा से कहलाया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा।

संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाह कर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद बायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

जर्रा झूम उठा जब जानी पहचानी प्यारी सी खुशबू ने उसे एक बार फिर घेर लिया। मगर जब हवा ने फूल का पैगाम सुनाया तो एक आग सी उठी जर्रे के सीने में। अपनी बेकसी पर वो तड़प उठा, काश वो भी फूल के इर्द गिर्द होता, कुछ पल तो साथ होते, वो कितना अच्छा होता अगर यूं होता।

0: नया गीत के सुरीले सफर में आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए राजुल को इजाजत, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: कहते नहीं, उसे HIV है।
1: जानता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते।
2: क्या नहीं जानता?
1: ये कि HIV छूने से, हाथ मिलाने से और साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: सच में?
1: ये फैलता है HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से व संक्रमित माँ के बच्चे को। और HIV के बारे में और जानना हो तो तुम टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करने के साथ साथ अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र में जाकर HIV से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हो और अपनी HIV जांच भी मुफ्त करवा सकते हो।
3: चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: तो लो हम सुनो पंजाबी की तरह सजा प्रोग्राम सुरसांझ।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जितना

0: बिल्टअप
1: आपा कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इंतजार राशन पानी।

0: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾ ਚ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने

0: आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से। 11:05 हो चुके ने हूँ साड़ी आज दी ये सभा खत्म होंदी है। सवेरे 5:55 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।